हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 27, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आज के सभा में आप सभी का स्वागत है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित

0: निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई चिंतन के पलों को आत्मसात करते हैं, सुनते हैं ये विचार।
2: महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, निज कवित्त कही लागे ने नीका, सरस हूं अथवा अति फीका। यह मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि उसे अपनी हर चीज अच्छी लगती है, भले वह अच्छी हो या नहीं। अपने में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती, आती भी है तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि सभी उनकी प्रशंसा करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आत्म प्रशंसा अधिक अच्छी लगती है। उन्हें आत्म प्रशंसा का रोग होता है, वे आत्म प्रशंसा का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। नए व्यक्ति के सामने तो वे हवा बयार की तरह अपनी प्रशंसा करते हैं, जो गुण उनमें नहीं है उसका आरोपण भी अपने ऊपर कर लेते हैं। तत्काल तो रंग गाढ़ा बनकर चमकता है, भले बाद में असत्य का मुलम्मा उड़ जाता है। इतना भर तो एक हद तक क्षम्य भी है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जो उनको भली भांति जानता है उनके सामने भी डींग हांकने से बाज नहीं आते। कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं और कुछ दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। दोनों स्थितियों में दूसरों पर प्रभाव डालना ही मंशा है। कारण जो भी हो, यह अपने आप में एक मनोविकार है, आत्मरति है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से सुनकर उन्हें आत्मतोष होता है, भले इसमें सत्याभास हो या अतिरंजना। आत्म प्रशंसा करने वालों की कोई हद नहीं होती। इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता कि वे कहां और कब सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे। उन्हें अपने अशिष्ट आचरण का भी बोध नहीं होता। आत्म प्रशंसा वस्तुतः आत्महीनता की उपज है, यह शालीनता के विरुद्ध आचरण है। अपनी प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है, और संस्कार का क्षय मृत्यु के बराबर माना जाता है। यह सोचने की बात है कि जब प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है, तब आत्म प्रशंसा कितनी गर्हित मानी जाएगी। ऐसा वे लोग करते हैं जिन्हें न तो आत्मबोध होता है और न औचित्य बोध। वे जानकर भी नहीं जानना चाहते कि उनका यह आचरण लोगों को रुचिकर नहीं है। ऐसे लोग सबकी आत्मीयता, अपनत्व, सहयोग और सहानुभूति से वंचित रहते हैं। आत्म प्रशंसक व्यक्तित्वहीन, कमजोर और खोखले होते हैं।

कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, उनका व्यक्तित्व अविश्वसनीय हो जाता है। ऐसे लोग योजनावीर होते हैं, नित नई योजनाएं बनाते रहते हैं, उनकी योजनाओं का कोई ठोस आधार नहीं होता। वे अपनी हवाई योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं। ऐसे लोग व्यवस्थित व्यक्तित्व के नहीं होते। व्यवस्थित व्यक्तित्व की पहचान तो यह है कि वह जो करना चाहता है उसे कभी किसी से नहीं कहता। नीति भी है कि आप जो करना चाहते हैं कभी किसी से नहीं कहिए, बल्कि उसे कार्य रूप दीजिए। बात कहने की नहीं, करने की होती है। इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है जो उसकी प्रगति में सहायक होती है। आदमी का काम ही उसका प्रवक्ता होता है, उसका काम ही बोलता है। कवि शमशेर की कविता की ये पंक्तियां इस संदर्भ में सार्थक हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जो व्यक्ति काम कम या नहीं करते और बातें ही अधिक करते रहते हैं, वे अविश्वसनीय हो जाते हैं, उनकी साख नहीं बनती, जो जीवन को सफल नहीं होने देती। आत्म प्रशंसकों में एक बुरी प्रवृत्ति यह भी होती है कि जहां वह अपनी प्रशंसा कर रहा होता है, वहीं दूसरों की निंदा और आलोचना भी करने से नहीं चूकता। ऐसे लोग दूसरों का अहित जितना नहीं करते उससे अधिक अपना करते हैं। सार्थक कार्य करने के बदले जीवन को व्यर्थ करते हैं। आत्म प्रशंसा करने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जिस व्यक्ति में हीन भावना हो आरोपण करता है, यहां क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे लोगों में कई तरह की बुरी लतों के लगने का भी अंदेशा होता है। अक्सर वे ठगी, फरेब और उजक्केपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आत्म प्रशंसा एक घातक प्रवृत्ति है जिससे बचना ही चाहिए।

श्रोता भी सुन रहे थे आज का चिंतन FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, कहते हैं ना कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है तो प्रेम की शक्ति है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर किसी पशु के शरीर पर हम स्नेह और प्रेम से हाथ फेरते हैं तो हमारे तरफ आकर्षित होता है। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है।

स्वतः प्रेम पर कबीर साहब ने भी बहुत सारी साखियां लिखी हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। यानी प्रेम का रास्ता बहुत पतला होता है, इसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक मन में अहंकार है तब तक ईश्वर मिलता ही नहीं है। और आगे लिखते हैं कबीर साहब, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम न तो किसी खेत में पैदा होता है, नहीं कहीं बाजार में मोल बिकता है। जिसे ही सच्चा प्रेम चाहिए उसे अपना अहंकार दान भी देना पड़ता है।

श्रोताओं कहते हैं कि जहाँ प्रेम की शक्ति हो वहाँ कठिन रास्तों पर भी चलना आसान हो जाता है, और जहाँ प्रेम का अभाव हो वहाँ सही रास्तों पर भी लोग नहीं चल पाते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव पैदा कीजिए, एक दूसरे को आत्मीय दृष्टि से देखने की जरूरत है।

श्रोताओं, इस संसार में दो चीजें मनुष्य को मिली हुई हैं, हर एक मनुष्य के पास है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। एक सरल सहज हृदय और दूसरी चीज है आत्मीय दृष्टि, और इसे बढ़ाते रहने की जरूरत है। जहाँ सहज सरल हृदय होगा और आत्मीय दृष्टि होगी, उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। भक्ति गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए भाई श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरित्र मानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण आज के तहत जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता साथियों, से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खोटा और नागपुरी लोकगीत।

फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता।

शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी, खेती बाड़ी हमारा कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर।

शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत जानकारी, यह कार्यक्रम होगा 7:15 पर। फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके चाहत आप सुनेंगे रात्रि 8:00। श्रोताओं, कुछ और फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के साथ हम हाजिर होंगे रात्रि 10:00 रजनीगंधा के साथ। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। और आज के सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण, श्रोता भी सुन रहे थे अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.1।

0: व संस्थानां संस्थापना विद्यमान संस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिशा जौली गायत्री गोपीचन्द अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग।

0: की जय हो। देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
1: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
2: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, तिलक दहेज मारो हो हम बदनसीब के।

0: पर कोई कहे लिखे लत कोई कहे लिखे लत अंगूठा दिखा ले
1: कहे। लाल बिहारी शाह और सत्येंद्र मिश्र को अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में। इसी के साथ ही लोक रंग का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम हाजिर होते हैं स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम को लेकर।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्वास्थ्य वार्ता में आइए आज हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता से लिखी सुधा रानी की बातचीत। विषय है छोटे बच्चों में बढ़ते टीबी की बीमारी।

0: मानो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि छोटे बच्चों में टीबी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, और अगर बढ़ रही है तो इसके रोकथाम या इसके बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और आपसे टीबी संबंधित कुछ जानकारी पर बात करूंगा।
0: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है, ये किस तरह से जानलेवा बीमारी है, सर इस बारे में आप बताएं।
1: टीबी एक धीरे धीरे फैलने वाली बीमारी है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया से होता है। जनरली बड़ों के कारण बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है। बच्चे रिसीविंग कैंडिडेट होते हैं और जिनके टीबी कंट्रोल में बड़े नहीं होते हैं उनके वातावरण में ये टीबी के कीटाणु तैरते रहते हैं। इसलिए जिसके घर के आसपास उस तरह के मरीज होते हैं वहाँ घर में बच्चों को इस तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: तो सर, आपने कहा कि टीबी बीमारी बड़ों से बच्चों में फैलने के खतरे ज्यादा होते हैं, तो बड़ों से कैसे किस तरह से ट्रांसमिट होता है बच्चों में?
1: मुख्य रूप से ये सांस से फैलने वाली बीमारी है। जब बड़े खांसते हैं तो वातावरण में टीबी के कीटाणु फैल जाते हैं। आसपास में रहने वाले बच्चों पर उनका प्रभाव ज्यादा होता है या जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है वैसे लोगों पर जल्दी असर होता है, जैसे एचआईवी डायबिटीज ये सब कंडीशन जिनके होते हैं उन पर ये बीमारी ज्यादा असर होती है।
0: सर, बड़ों में तो टीबी बीमारी आमतौर पर खांसी का एक लक्षण दिख पड़ता है सर, उसमें बच्चों में भी खांसी के लक्षण दिखते हैं या फिर और भी कुछ लक्षण उसमें दिखते हैं?
1: ये तो किसी भी उम्र में हो सकता है टीबी। तो बच्चों में अगर ये बच्चे कई बार कमजोरी के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके शरीर की वजन कम होने लगती है,
0: फिर साफ सफाई का भी अभाव होता है कई बार,
1: हाँ वो भी एक बढ़ाता है बीमारी को। तो मुख्य तो कीटाणु से होता है, ये शरीर में पहुँच करके शरीर को कमजोर कर देते हैं और उनका जो भी सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, खांसी आ जाती है, बुखार होता है, रात के पसीना दे दे के बुखार आएगा, वजन गिरने लगता है, भूख कम होने लगती है, दिनों दिन शरीर दुबला होता चला जाता है, कोई दवा जल्दी दूसरी दवा असर नहीं करती, तब उस कंडीशन में अनुभव के आधार पर फिर डॉक्टरी छानबीन की आवश्यकता होती है और उसके पता लगने के बाद टीबी के इलाज अब तो सरकार के द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क है और सब दवा भी सरकार के द्वारा, जांच भी सुविधा सरकारी डॉट सिस्टम से मिल जाती है।
0: सर, ऐसे तो टीबी बीमारी होने का जो खतरा होता है वो 95% चांस होता है फेफड़े की टीबी पकड़ने की, लेकिन अगर शरीर के बाकी हिस्सों की हम बात करें सर, तो उसमें आँख या फिर और भी कई स्किन का भी टीबी पकड़ता है।

0: बोन टीबी भी होता है, तो सर इसके फैलने के क्या कारण हो सकते हैं?
1: टीबी मेनली तो सांस से फैलता है, कभी कभी कुछ टीबी पेट के रास्ते से भी आता है, जैसे कि गाय का दूध के द्वारा भी कुछ बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस होता है जो पेट के अंदर भी बीमारी हो सकती है उससे। फिर ब्लड के द्वारा जैसे सांस में आ गया, वहाँ से फैल करके टीबी कहीं भी जा सकता है आपका। तो उसमें जब शरीर में कमजोरी रहती है वहाँ टीबी अन्य अंगों में भी फैल जाता है, वो किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो चमड़े में हो सकता है, वो हड्डियों में हो सकता है, वो ब्रेन में हो सकता है, वो आपका किसी भी अंग पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, गांठ में होता है, कॉमनली वो गांठ में अक्सर फैलता है, जो गले के गांठ, छाती के अंदर गांठ होती है, पेट के अंदर गांठ होती है, हर जगह वो फैल जा सकता है इस तरह से। फिर आंखों में भी कुछ बीमारियां होती है, यूवीआईटीज वगैरह उसमें देखा जाता है तरह तरह से, आंख के स्पेशलिस्ट उसकी पहचान करते हैं, उसमें अलग तरह का रेटिना के आसपास का यूविया और रेटिना में चेंजेस हो जाता है तब पता चलता है।
0: जैसे फेफड़े की टीबी जब होती है तो इसमें मुख्यतः बलगम जो होता है वो मुख्य, लेकिन बाकी अंगों में आपने कहा गांठ, तो किसी भी तरह के गांठ अगर शरीर में दिख पड़ते हैं या महसूस होते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: कुछ गांठ होते हैं नॉर्मली, जैसे सर्दी खांसी के बाद टिक्का दुक्का गांठ हो सकते हैं आपके, लेकिन कोई भी गांठ अगर तेजी से बदलाव हो रहा है उसमें, उनकी साइज बढ़ रही है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर बढ़ता जा रहा है,
0: मूव नहीं कर रहा है इधर,
1: हाँ, या उसमें चेंजेस दिख रहा है, उसमें घाव बन रहा है, पीप बन रहा है, इस तरह का कोई भी परिवर्तन हो और एक एरिया से दूसरे एरिया में हो रहा, वैसे गांठ का तुरंत छानबीन करना चाहिए नजदीक के डॉक्टर से मिलकर के, तुरंत उसका सॉल्यूशन।
0: तो गांठ का एक तो हो गया, टीबी बीमारी भी एक लक्षण बनता है उसका, और कई बार कैंसर का भी लक्षण हो जाता है गांठ।
1: कैंसर में भी गांठ काफी कॉमन है, अगर वो तेजी से बढ़ रहा है और शरीर पर उसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है, अन्य लक्षण आने लगते हैं, तो कैंसर भी एक ऑप्शन है जिसे छानबीन से पता चलता है।
0: सर, अगर बड़े लोगों को टीबी बीमारी हो जाती है तो उसके प्रिकॉशन के लिए अगर उन्हें बताया जाए तो वो अपने ध्यान रख करके बहुत सारे प्रिकॉशन को वो लेते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों को हो जाए टीबी सर, तो उसके प्रिकॉशन के लिए तो बड़ों को ही ध्यान देना होता है सर, तो किस तरह का ख्याल रखना चाहिए उन्हें इस बारे में आप?
1: बच्चों का तो पहले तो पहचान होना चाहिए कि ये टीबी बीमारी है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है, डॉक्टर अपने हिसाब अनुभव और ज्ञान से छानबीन करेंगे, उनका एक्सरे कराएंगे, उनका चमड़े का मॉन्टूस टेस्ट होता है, बलगम चूंकि बच्चा निकाल नहीं पाता है तो हम लोग बलगम का जांच आसानी से नहीं कर पाते उनका, तो अन्य तरीके से उपाय किया जाता है, अगर भर्ती बच्चे होते हैं तो पेट के अंदर से उसका लार निकाल करके उसको छानबीन किया जा सकता है, इसमें फिर सीबी नेट टेस्ट वगैरह गवर्नमेंट सिस्टम में सब हो सकता है, मॉन्टूस टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होते हैं, इन चीजों के द्वारा सब मिला जुला के डॉक्टर जज करते हैं और उनकी जल्दी पहचान होने पर उसका पूर्ण इलाज कम से कम 6 महीने का जरूर से देना चाहिए और वो दवा छोड़नी नहीं चाहिए।
0: दवा अगर छूट जाए बीच में सर तो इससे क्या नुकसान हो सकता है?
1: एक तो बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, दूसरी तरफ बीमारी में रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। आजकल सबसे ज्यादा खतरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का हो गया है, वो अभी सबसे बड़ा कारण बन रहा है जिससे टीबी जल्दी ठीक नहीं होती,
0: ज्यादा जानलेवा भी हो जा रही है
1: उसके कारण। दवाइयाँ जो अच्छी दवाइयाँ हमारी पहले वाली थी वो पहले की तरह काम नहीं करती, तो बहुत सारी नई नई दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि छोटे जगहों में नहीं हो पाता और उसका दुष्प्रभाव भी अधिक देखा जाता है, उसको स्पेशलिस्ट के नजर से ही उसका इस्तेमाल होता है, सोच समझ के करना पड़ता है, बीच बीच में छानबीन करते रहना पड़ता है और इलाज लंबा भी हो जाता है।
0: सर, आपने एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात कही, तो ये ज्यादा खतरनाक किस प्रकार है सर? ये चूंकि नॉर्मल टीबी से सेकेंड फेज इसको कहा जाता है, तो नॉर्मल टीबी से इसमें ज्यादा खतरा किस तरह का है?
1: ये जल्दी नॉर्मल दवाइयाँ इसमें असर नहीं करती हैं और शरीर कमजोर ज्यादा होने के कारण ये दवाइयाँ भी धीरे धीरे असर करती हैं, ये पहले वाली मुख्य दवाइयों की तरह तेजी से कारगर नहीं होती है और इनका इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट भी होता है, इस तरह से जल्दी असर नहीं होता तो बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती और लंबे समय के लिए सुपरविजन इलाज सब में रहना पड़ता है और न्यूट्रिशन का भी काफी ख्याल रखना पड़ता है, ओवरऑल देखना पड़ेगा।
0: सर, आपने कहा कि टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है, मतलब ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, तो इसका ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए सर ताकि बच्चे से या बड़े लोग से दूसरे में ट्रांसफर ना हो?
1: पहले तो आप जहां रहते हैं वहां अच्छे तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें, ऐसी जगह पर है जहाँ पर की खुली हवा खुली धूप घर में आती हो और आसपास में कोई बुजुर्ग बीमार वगैरह है जिसकी ख्याल नहीं कर पा रहे हम लोग, तो उनका उचित इलाज करना चाहिए। अगर उनको टीबी है तो उनको अगर ठीक हो जाएगा तो बच्चों में बीमारी फैलने के खतरे कम हो जाते हैं। फिर चेचक होने के बाद लोग घर में रखते हैं बहुत दिन तक बच्चों को, अक्सर चेचक के बाद ही इस तरह का बीमारी होने का संभावना ज्यादा होता है चूंकि शरीर कमजोर हो जाता है, तो ये भी एक मुख्य कारण हुआ करता है बच्चों में टीबी का अंश डेवलप करने का। बहुत बार जब शरीर किसी भी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है वहाँ टीबी की बीमारी बढ़ने की खतरे बढ़ जाते
0: हैं। सर, आपने कहा कि अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो उसमें शरीर कमजोर हो जाता है और फिर इस तरह की टीबी जैसी बीमारियां अटैक करने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर कि टीबी बीमारी भी अगर हो जाए तो इसमें भी शरीर कमजोर होता जाता है धीरे धीरे, तो इसमें खान पान का विशेष तौर पर किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ डाइट में अपना लेना चाहिए बच्चों को स्पेशली अगर कहें?
1: बच्चा जिस उम्र का है उसके हिसाब

0: से उसकी खाने पीने की जरूरत होती है। अगर 6 महीने से नीचे है तो बच्चों को माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है, और किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो अल्टरनेटिव सही दूध पीना चाहिए, बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 6 माह से ऊपर हर बच्चे को माँ का दूध के अलावा खान पान शुरुआत होनी चाहिए, उसमें धीरे धीरे करके खाने को संतुलित बनाना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा, हरा सब्जी, विटामिन वगैरह, मिनरल वगैरह, इसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। खास करके जब बीमार आप हो जाए तो दूध, दही, अंडा, दाल, हरा सब्जी, सबका उपयोग बढ़ा देना चाहिए। घी तेल भी बच्चों को जरूर से खिलाना चाहिए। तो इस तरह से संतुलित भोजन ज्यादा से ज्यादा देने से ठीक होता है बीमारी।
1: और टीबी बीमारी के दौरान क्या मांस मछली का सेवन भी उपयुक्त है सर?
0: हाँ, वो जल्दी रिकवरी करने में आपको मदद करेगा, क्योंकि शरीर को उस समय रिपेयर की जरूरत होती है। तो हम जितना स्वस्थ और संतुलित भोजन देंगे बीमारी को संतुलित करने में मदद मिलेगी, ये आवश्यक होता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट सिस्टम में आजकल सही खान पान के लिए अलग से मरीज की पहचान करके मरीज के परिजन को मदद की एक तरीका डेवलप किया गया है। वहाँ सरकारी जहाँ से दवाइयाँ मिलती है वहाँ से ये सब भी सुविधा मिल जाती है, कुछ अतिरिक्त फंड मिल जाता है वहाँ से, जो खान पान में मदद हो।
1: आपने कहा कि टीबी बीमारी इसकी जो जांच है या फिर इसका जो इलाज है वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त है, लेकिन कई बार लोग ऐसा सोचते हैं सर कि गवर्नमेंट में जो भी है वो थोड़ा लापरवाही वहाँ बरती जाती है और ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कई बार वो प्राइवेट अस्पताल के भी चक्कर लगाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इलाज तो कहीं से भी हो सकता है, जिसकी जैसी क्षमता है वहाँ से इलाज ले सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दुकान में दवाई मैंने हर जगह नहीं मिल पाती पहले की तरह टीबी की, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नियम है, उनको इस टीबी बीमारी को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, कुछ कानून ऐसा बना है, तो कई जगह पर ये उतना सहजता से अब गवर्नमेंट सिस्टम के बाहर मिल नहीं पाती है, तो ये सब कठिनाइयां हैं थोड़ी।
1: इसलिए बेहतर है कि सरकारी अस्पतालों में भी इसका ट्रीटमेंट करवाएगा तो बेहतर,
0: वहाँ इनरोल करना जरूरी है, उसके बाद ही आगे का रास्ता।
1: तो सर आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों में बढ़ रहे जो टीबी बीमारी के कारण है और इसके लक्षण के बारे में भी आपने विस्तार से सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, धन्यवाद आपके लिए भी।
2: श्रोता भी सुन रहे थे छोटे बच्चों में बढ़ते टीबी की बीमारी विषय पर डॉक्टर राजेश गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ से श्वेता रानी की बातचीत। इसी के साथ ही स्वास्थ्य वार्ता का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपके नजदीकी बैंक शाखाओं के काउंटर पर गंदे, कटे फटे, क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण करेंसी नोटों को बदला जा सकता है।
2: यदि बैंक शाखा नोट बदलने से मना करे तो उस बैंक में शिकायत दर्ज करें। यदि शिकायत एक महीने तक न सुलझे तो आप RBI लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
1: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत सी गजल के साथ ही गीत संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके तुरंत बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है सबसे मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
2: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जाए।

0: सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विजिंजम समुद्र

0: समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंजम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंजम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क।

0: तार्मिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए संघर्ष करेंगे।
1: राज्य में परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा।
2: अभी यह लड़ाई अधूरी है। अभी 11-13 जेपीएससी का टेक्निकल बातें हम लोग जानना चाह रहे हैं। कुछ में यूपीएल ने मेंस करवाया था, कुछ में इंटरव्यू करवाया था, उन एग्जाम्स का क्या हुआ है थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। सीबीआई जांच का क्या उसके बारे में भी विचार करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने विधिवत रूप से आंदोलन समाप्त करने का फैसला कहां लिया है।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बिना छात्रों की जीत अधूरी है। श्री साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले आंदोलन दबाने का प्रयास किया और अब दबाव में आकर यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद नौकरी कर रहे युवाओं में भी भारी आक्रोश है। प्रोजेक्ट भवन पर जुटे युवाओं ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हार बताया है। प्रभावित युवाओं ने न्याय के लिए न्यायालय जाने और आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है।
3: इस सरकार ने भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दमन करते हुए हमें और इसी जैसी गलत किया है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गया है। लोकतंत्र हारा है, भीड़ तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। मैं हमें इस सरकार पर शर्म है। आगे हम सोचकर रुख करेंगे।
1: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। विशेष टीम ने कल

0: आयोग कार्यालय और सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इस बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीएस बी के राम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने आज सचिव सुधीर गुप्ता को फिर से तलब किया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के कतरास, झरिया और बागमारा में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुपरवाइजरों पर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में बैंक लूट की योजना बना रहे अपराधियों और पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। इसमें एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि थाना प्रभारी विनय कुमार चोटिल हुए हैं। एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी 4 अपराधियों को 3 पिस्टल और 15 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। उधर धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में भी कल रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है। एसएसपी प्रभात कुमार के अनुसार कुख्यात गोपी खान गैंग के यह दोनों अपराधी लेवी वसूलने आए थे।
1: 3 लड़के थे, तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था, तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और 1 भागने में सफल हुए हैं।
0: देवघर श्रावणी मेले के 19वें दिन और तीसरी सोमवारी पर बाबा नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कल रिकॉर्ड 3,61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। आज मंगलवार सुबह भी तड़के 4:15 बजे पट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लगी है और प्रशासन मुस्तैद है। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण आज चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ समेत राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रात से ही वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने गरज चमक और वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 17वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय खुले चयन ट्रायल का दूसरा चरण आज से रांची के खेलगांव में शुरू हो रहा है। इसके तहत अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग में ताइक्वांडो, कबड्डी, एथलेटिक्स और शूटिंग के खिलाड़ियों का चयन विभिन्न स्टेडियमों में किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल समेत वर्ष 2014 से टीडीपीएल की आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीजीएल नियुक्ति और 10 परीक्षाएं रद्द होने से सहमे युवा, 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के 300 करोड़ पानी में डूबे। प्रभात खबर लिखता है, औद्योगिक समिति के सदस्य कल से एचईसी का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, खनन बिल के विरोध में विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता का पीए गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल समेत वर्ष 2014 से टीडीपीएल की आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। परीक्षा रद्द होने के फैसले से नौकरी कर रहे युवाओं का फूटा गुस्सा, प्रोजेक्ट भवन में किया प्रदर्शन, न्याय के लिए न्यायालय जाने का किया ऐलान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कहा, त्रुटि रहित वोटर लिस्ट बनाने में लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। तीसरी सोमवारी को बाबा नगरी देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रिकॉर्ड 3,61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। आज सुबह से ही लगी लंबी कतारें। और बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से राजधानी रांची

0: समेत कई जिलों में रात से मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने आज चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ के लिए जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी। कार्यक्रम का पहला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कुमार शानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है 1942 लव स्टोरी से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी नजदीकी बैंक शाखाओं के काउंटर पर गंदे, कटे फटे, क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण करेंसी नोटों को बदला जा सकता है।
2: यदि बैंक शाखा नोट बदलने से मना करे तो उस बैंक में शिकायत दर्ज करें। यदि शिकायत एक महीने तक न सुलझे तो आप RBI लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
1: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सलाम नमस्ते यह था फिल्म का नाम। शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अभी ओ यार लोग कहते हैं, जब भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक अनुवादक, एक लेखक। कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं। तो फिर कहां से शुरू की जाए।

क्या 1963 से शुरू की जाए, जहां बंदिनी फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लिखा मेरा गोरा अंग ले ले।

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के

बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे, या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे, या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन नहीं रहा।

सम्पूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर। राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

गुलजार साहब के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने पर ये कहां छिपे रह गए थे।

पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार। ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ इरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब को लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए। उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया वो बाद में, पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाएं।

0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: फिल्म दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972, आप समझ गए कि बात जीतेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की हो रही है।

भाई ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और

0: राहुल देव बर्मन, गुलजार और आर डी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।
1: घोड़ा पहुंचा चौक में।

कहने से भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्मी गाना है, बल्कि ये एक नर्सरी राइम का रूप ले चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा गाते हुए बड़ी हो गईं, और फिर पिताओं ने अपने बच्चों को भी यही गीत सिखाया और फिर ये बच्चे भी इसे गाते हुए बड़े हो गए। इस बीच में कुछ और पीढ़ियां आईं जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जैसे गाने गाते हुए बड़े हुए। गुलजार साहब को बच्चों से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बच्चों के लिए न केवल फिल्में बनाई बल्कि बच्चों के मुद्दों पर फिल्में बनाने से इतर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बोस्की का पंचतंत्र और दूसरी कुछ किताबें। तो ये तो हुई गुलजार और बच्चों की बातें। अब जरा गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की खुशबू को दूर तक फैलाया जाए। जी हाँ, सन 1975 में आई फिल्म खुशबू, राहुल देव बर्मन का संगीत।

राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसे गाने जो कम सुने गए हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में ये फिल्म आई थी।

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में।

जिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आरडी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

ऐसी जादुई रही है गुलजार की पूरी सिने यात्रा। इस सिने यात्रा में कभी गोलमाल भी हुआ। जी हाँ, फिल्म गोलमाल, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो धमाल किया कि इस गोलमाल को हम हमेशा याद रखते हैं। देखिए ना, इस कार्यक्रम का वक्त भी किस तरह से बीता चला जा रहा है कि किशोर कुमार साहब समझा रहे हैं।

सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है, और कोशिश भी तो यही है। तो अब आशा भोसले की आवाज में फिल्म सितारा का एक गाना आ रहा है जो जिंदगी की संगीन हकीकत को आपके

0: गुलजार साहब की इस स्नेह यात्रा का जिक्र करते हुए, उनके गानों की यात्रा का जिक्र करते हुए अब हम सन 1985 की तरफ आ गए हैं। कमाल की बात यह है कि अमीर खुसरो की एक रचना के साथ गुलजार साहब ने प्रयोग किया और फिर बना फिल्म गुलामी का ये गीत।
1: जी हाँ।

1988 में गुलजार साहब ने एक नायाब फिल्म बनाई लिबास। भले ये फिल्म ना आ सकी हो, लेकिन इस फिल्म का संगीत रिलीज हुआ और ये लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

सबसे बड़ी बात ये कि गुलजार साहब खुद को हर थोड़े दिन में रीइन्वेंट कर लेते हैं, एक नए रूप में सामने आ जाते हैं। फिल्म पटाखा का ये गाना सुनिए, आपको यूं लगेगा जैसे बिल्कुल किसी युवा गीतकार की देन है ये। ये गाना कहता है, आजा नेटवर्क के भीतर कहकर हेलो हेलो हेलो, मेरे व्हाट्सएप के तीतर कहके हेलो हेलो हेलो।

जाहिर है कि इस रचनाकार के भीतर इतनी रचनात्मक गहराई है कि हम चाहे जितनी बार गहरा गोता लगा लें, हर बार कुछ नया मिलता है, हैरानी में डाल देता है। ये धूमधड़ाक गाना फिल्म सत्या से।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार साहब पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार श्रोताओं, एक खूबसूरत बरसाती सुबह आप सभी के साथ हम लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से जीवन में यौवन का और मौसम में सावन का महत्व है, तो इस खास मौसम की खास बातें आज करेंगे। हम आपको बता दें कि सावन का एक नहीं कई महत्व है। सावन का महत्व है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। सावन एक ऐसा महीना है जो बारिश के दिनों में आता है और भरपूर बारिश देकर जाता है। सावन एक ऐसा महीना है जिस पर अनेक गीत लिखे गए हैं, अनेक परंपराएं बनी हुई हैं। एक ऐसे ही खूबसूरत सुबह, बरसाती सुबह में आप सभी का स्वागत है।

श्रोताओं, इंसान का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का दर्पण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कुछ इंसान के चेहरे पर लिखा होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके बोलने वाले शब्दों से पता चलता है कि वह इंसान कैसा है। हम सहज हैं, सरल हैं, कुदरती नियमों को जीवन में धारण करते हैं, समानता मानवता हमारे चरित्र का हिस्सा है, तो हमारा व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा और विश्वसनीय भी होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारा स्वभाव क्रोध वाला है तो हम किसी से पहली मुलाकात में ही अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि हमें क्रोध क्यों आता है। वास्तव में क्रोध हमारी समझ और मान्यता से आता है। अगर हमारी समझ मूल्यहीन है और गलत मान्यता से प्रेरित है तो हम क्रोधी होते चले जाते हैं। तो चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत है।

श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे कि क्रोध हमें क्यों आता है। तो भाई, मूल्यहीनता अगर जीवन में होगी तो हमें क्रोध आएगा। अगर हम कुदरत के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें क्रोध आएगा। और कई बार सच्चे हृदय वाले के मन से भी क्रोध होता है, क्योंकि अगर चीजें अगर व्यवस्थित नहीं हो, नियम अनुसार नहीं हो, कुदरती नहीं हो, तो सच्चे दिल वाले क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन इस क्रोध का भी अपना एक नुकसान है। बहरहाल, इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम। हम थोड़ी चर्चा तापमान के बारे में कर लेते हैं, मौसम के बारे में कर लेते हैं। आज दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और रात्रि तापमान 23 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है, और लगातार कल से भी बारिश हो रही है और आज की सुबह भी अच्छी बारिश हुई है, और तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। अगर शहर में आज के कार्यक्रमों की बातचीत करें तो उपायुक्त का जनता दरबार है और समाहरणालय सभागार में समय इसके लिए निर्धारित है 11 बजे। और इसके अलावा आज इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, अखबार के पन्नों पर डालेंगे निगाह, कौन सी खबरें प्रमुखता से छिपी हुई हैं, इन तमाम बातों का हजारीबाग पन्ने पर क्या क्या

से और अखबार के प्रथम पृष्ठ पर कौन सी बातें आई हैं, तो तमाम बातों का जिक्र करेंगे। ऐसे ज़्यादातर हम आपको बता दें कि आज दो तरह की खबरें हैं, झारखंड सरकार द्वारा JSSC और CGL परीक्षा रद्द करने से जुड़ी हुई खबरें प्रथम पृष्ठ पर पूरी प्रमुखता के साथ लगभग हर अखबार ने छापा है। इसके अलावा कल सावन की तीसरी सोमवारी से जुड़ी हुई खबरें भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई, तस्वीरों के साथ प्रकाशित की गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से शिवालयों की तस्वीर है और लंबी कतारें हैं। तो ऐसी कई खबरें अखबार में जब हमने पलटा तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

श्रोता, हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हमारे जीवन में मूल्यों का स्थान होगा तो हमारी समझ भी बेहतर होगी और हम क्रोध से भी बचे रहेंगे। इसलिए हमें जीवन में मूल्यों को धारण करना चाहिए। दायरे में सिमटी समझ से बाहर निकलकर विराट हृदय रखने की जरूरत है, तो हृदय का सौंदर्य भी चेहरे और स्वभाव का हमारा हिस्सा बन जाएगा और ये चेहरा खिला खिला और थोड़ी इसमें दिव्यता भी नजर आएगी। ऐसी मान्यता है कि धैर्य रखने से शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, धैर्य रखने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन किस तरह से धैर्य रखना चाहिए ये हमें जरूर जानना चाहिए। हम धैर्य इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे जो मानवीय जीवन की जो मान्यताएं हैं अच्छी और बुरी की, उसकी समझ हमारे भीतर हो और उस अनुसार से अगर हमें धैर्य रखते हैं तो वो धैर्य हमारे जीवन को की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हम क्वालिटी का लाइफ जीते हैं। जैसे हम देखते होंगे कि धैर्य की जो कुदरती मान्यता है उस पर तो पहले हमें विश्वास रखना ही होगा। जैसे कि अति का एक दिन अंत होता है, दिन है तो रात होगी ही, आगे दुख है तो पीछे सुख है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आज की हार कल की जीत है, ऐसी कितनी ही बातें हम सुनते हैं, ये मनुष्य को धैर्य रखने की सीख देते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, तत्व से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको अगर हम स्मरण करते हैं, पढ़ते रहते हैं तो हमारे भीतर धैर्य रखने की क्षमता बड़ी होगी। चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो, हम धैर्य से बिल्कुल नहीं चूकेंगे।

श्रोताओं, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख में लम्हे नहीं तोड़ा करते। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं गुलजार साहब की। आज उनका जन्मदिन है, तो गुलजार कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय शायरी से रिश्ते, वक्त और यादों की गहराई दिखाई दे जाती है, और उन्होंने जो मानवीय जीवन का जो दर्शन है उसे शब्दों में, गीतों में ढालकर आम लोगों तक पहुंचाया है, और यही गुलजार साहब की खासियत है। और गुलजार साहब तो ऐसे अगर हम चर्चा करें, जिक्र करें, तो कई ऐसी फिल्में हमें मिल जाएंगी जिसके गीत हम लगातार सुनते रहें और जीवन की गहराई हमें उसमें दिखाई देती है। जैसे फिल्म आंधे का जिक्र कर ले, 1975 ईस्वी में ये फिल्म आई थी। परिचय 1972 की फिल्म है और ये गीत आप लगातार सुनते रहें, मुसाफिर हूँ यारो। और मासूम ये फिल्म आई थी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ये 1983 ईस्वी में यह फिल्म आई थी। दिल ढूंढता है फिर वही, तो ये भी 1975 की फिल्म मौसम का ही गीत है और ये बहुत ही लोकप्रिय रहा है। गोलमाल का गीत, जिसका गीत अभी हम सुन रहे थे, 1979 ईस्वी में ये फिल्म आई थी और बेहद लोकप्रिय रही ये गीत। इसके अलावा घर, छैया छैया और इजाजत, इसके अलावा हम कहें कि फिल्म इशिकिया और खामोशी जैसे गीत, खामोशी जैसे फिल्मों के गीत बेहद लोकप्रिय रहे हैं।

श्रोताओं, अब रुख करते हैं थोड़ा अखबार के पन्नों की ओर। और दैनिक जागरण का ये प्रथम पृष्ठ है और अखबार ने बहुत ही प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित की है। सीजीएल के अलावे टीडीपीएल की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया यह निर्णय। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच। वर्ष 2014 के बाद हुई सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में, भाजपा शासनकाल में हुई परीक्षाएं भी। टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं होंगी रद्द। 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, झारखंड पात्रता परीक्षा, वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, सहायक वन रक्षक नियुक्ति परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा और सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 23 और 25। अखबार लिखता है कि राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की सभी परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। इन परीक्षाओं की जांच झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी करेगी। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 के बाद हुई सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को यह निर्णय कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया। मंत्रियों के साथ 4 घंटे की मैराथन बैठक में छात्रों की मांगों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें इन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। शाम 5 बजे शुरू हुई बैठक रात 9 बजे खत्म हुई और इससे पहले अपराह्न 2 बजे आंदोलनरत छात्रों के साथ होने वाली बैठक अचानक रोक दी गई। जिला प्रशासन ने अधिकारी छात्रों को लेने जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच भी गए थे। प्रतिनिधिमंडल को गाड़ी में भी बिठा दिया गया था, लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही वापस लौट गई। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों की बैठक बुलाए जाने के

के प्रस्तावित वार्ता को होल्ड किया गया और यह सब घटनाक्रम कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने तथा सीआईडी के जेएसएससी तथा इसके सचिव के यहाँ छापेमारी के बीच हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण खबर प्रथम पृष्ठ में अखबार ने छापा है। और एक जो बैनर जो खबर लगी हुई है वो हम आपको बता दिए, बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के लखीसराय में भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत और 27 घायल, दैनिक जागरण की ही खबर है। दैनिक जागरण की ही कुछ और खबरों की हम थोड़ा शीर्षक उसका हम आपके साथ साझा करते। पुराने वाहनों के लिए फिर शुरू की जाए E10 की बिक्री, भाजपा की नई टीम, स्मृति ईरानी, राम माधव की वापसी, मालवीय की छुट्टी, राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा बने भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री। दैनिक जागरण का हजारीबाग भास्कर पन्ना है, इसमें जो खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार, किया जलाभिषेक। अखबार लिखता है कि सावन माह की तीसरी सोमवारी के पावन अवसर पर सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अगले सुबह से ही मंदिरों के पट खोलते ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। शहर के 2 दर्जन से अधिक शिव मंदिरों में पूरे दिन भर हर हर महादेव बोलबम के जयघोष गूंजते रहे। तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके अलावा जो दूसरी खबर है बहुत ही प्रमुखता से ध्यान खींचती है वो ये है, हजारीबाग में सर्वाधिक 56,805 अपात्रों के नाम हटेंगे और राज्य के 15 जिलों के 1.28 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। हजारीबाग डेडलाइन से हजारीबाग पन्ने पर भी यह खबर बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित है। अखबार लिखता है कि राज्य में राशन कार्ड के सत्यापन का काम चल रहा है, इसमें अपात्र राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं के नाम काटे जा रहे हैं। इनका उद्देश्य उन लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है जिन्हें इसकी जरूरत है। हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जो अमीर हैं, उन्हें राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत यह कार्रवाई हो रही है। इसमें केवल वास्तविक और जरूरतमंद गरीबों को ही जनवितरण प्रणाली का लाभ मिल सकेगा। राशन कार्ड के किसी सदस्य का नाम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सरकारी अधिकारी काटते हैं, इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी और फूड इंस्पेक्टर शामिल है। यह कार्रवाई परिवार के मुखिया के आवेदन पर होती है और यह मृत्यु या विवाह के बाद होती है। सरकार द्वारा अपात्र पाए जाने पर यह स्वतः सत्यापन के बाद भी की जाती है। इसके अलावा आंकड़ों के सहित हर एक जिले के आंकड़ों को अखबार ने प्रकाशित किया है। और एक और खबर है जो ध्यान खींचती है, शहर में बिना नक्शा पास कराए बन रही है 100 से अधिक बहुमंजिला इमारतें, नगर निगम ने शुरू किया सर्वे, अवैध इमारतों पर होगी कार्रवाई, ध्वस्त करने की भी तैयारी, 4 से 8 मंजिला तक की इमारतें शामिल। तो ये थी अखबार की कुछ प्रमुख खबरें।

और श्रोताओं, इतिहास के पन्नों की बात करें तो आज की तारीख के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य या जो ऐतिहासिक तथ्य आज की तारीख के साथ जुड़े हुए हैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 18 अगस्त 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेसली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और गाजीपुर मोहम्मदाबाद से जुड़ी हुई एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना आज की तारीख से जुड़ी हुई है। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में तिरंगा फहराने के लिए 8 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और इन्हें इतिहास में अष्ट शहीद कहा जाता है। 1945 ईस्वी 18 अगस्त 1945 की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान में विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनका निधन भी हो गया और हालांकि उनकी मौत आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की शुरुआत हुई, जो भारत का पहला IIT था और बेहद लोकप्रिय IIT भी है। 2008 ईस्वी में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और सितार वादक उस्ताद विलायत खान का निधन हुआ था, यानी 18 अगस्त 2008 को। और 18 अगस्त 1900 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन और प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। और 1934 ईस्वी 18 अगस्त बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार, कवि और

निर्देशक गुलजार का जन्म हुआ था। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक तथ्य, कुछ अखबार के पन्नों में कुछ खबरें हम आपके साथ और साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

खूबसूरत खबर अखबार ने आज प्रकाशित किया है। 35 गुना अधिक कीमत पर बिकी फरारी ल्यूस कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार ने नीलामी में बनाया रिकॉर्ड। 382 करोड़ में बिकी फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार, ये इसे बड़े हेडलाइन के साथ लगाया है। और अखबार लिखता है कि दुनिया की मशहूर रेसिंग कार निर्माता कंपनी फरारी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार ने नीलामी में कीमत का नया रिकॉर्ड बनाया है। फरारी ल्यूस चेसी नाम की इस कार को सोदबी की नीलामी में $4 करोड़ यानी $382 करोड़ रुपये में बेचा गया। ये कीमत कार की मूल कीमत से करीब 35 गुना अधिक बताई जा रही है। नीलामी में मिली पूरी राशि फरारी फाउंडेशन के शैक्षिक कार्यक्रमों में खर्च की जाएगी। हालांकि नीलामी संस्था ने खरीदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। ल्यूस फरारी के इतिहास में पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार है और चेसी जीरो इस इलेक्ट्रिक मॉडल श्रृंखला की पहली उत्पादन चेसी है और जिस पर विशेष पहचान प्लेट लगाई गई है। कार के ऑप्टिकल वाइट बैकग्राउंड पर फरारी का सिग्नेचर प्रॉसिंग हॉर्स लोगो दिया गया है और उसका डिजाइन एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइन अधिकारी और आईफोन डिजाइन से जुड़े सर जॉनी आइव के स्टूडियो लव फ्रॉम के साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। यह 4 दस्तावेजों और 5 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ग्रैंड टूरर है और अंतिम असेंबली मार्नेली इटली में होगी और डिलीवरी 2027 में पहली तिमाही में तय है। बहुत ही खूबसूरत अखबार के कहें कि तस्वीर के साथ और अलग अलग बॉक्स में इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अखबार ने प्रकाशित की है। और इसके अलावा कुछ और खबरें हम आपको दिखा दें। देखिए एक और सावन सोमवारी पर नाग पंचमी का महासंयोग, महादेव के दरबार में आस्था का सैलाब। नई दिल्ली डेडलाइन से यह खबर है। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के ऐतिहासिक और बेहद दुर्लभ संयोगों पर 17 अगस्त को देश भर के प्रमुख शिवालयों में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। सालों बाद बने इस विशेष संयोग के कारण सुबह से ही देश के बड़े मंदिरों में सुबह से शुरू होकर देर शाम तक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। उज्जैन घंटों लगी रही लाइन, भगदड़ जैसे हालात। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ और ये ड्रोन तस्वीर अखबार ने प्रकाशित किया है और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर लग रही है। और अखबार लिखता है कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर और महाकाल के दर्शन किए। हर सिद्धि चौराहे के पास भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बने। बैरिकेडिंग टूटने और करंट के अफवाह से मची अफरा तफरी में 13 श्रद्धालु घायल हुए और कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये थी कुछ खबरें। ये अपना हजारीबाग पन्ना है हिंदुस्तान का और 2 खेल खबरें हैं जो बहुत ही प्रमुखता से अखबार ने प्रकाशित किया है। जिले की खेल प्रतिभाओं को बढ़ा देने के लिए 3 दिवसीय प्रतियोगिता का वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किया जाएगा आयोजन। अखबार लिखता है कि हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय खेलों का महाकुंभ 29 से तैयारी जोरों पर। अखबार लिखता है कि जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उनमें नया उत्साह भरने के उद्देश्य से उपायुक्त हेमंत सती के मार्गदर्शन में पहली बार उत्तरी छोट नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 29, 30, 31 अगस्त तक चलने वाले इस ऐतिहासिक 3 दिवसीय महाकुंभ में प्रमंडल के 7 जिलों के 1,288 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता 6 प्रमुख खेल आर्चरी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स का आयोजन होगा। और इसके अलावा और दूसरी बातें भी अखबार ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और इसी के साथ एक और खेल खबर है। हजारीबाग में 22 से जुटेंगे देश भर के शतरंज खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी 2 दिनी टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा और 2.12 लाख नगद राशि का किया जाएगा वितरण। अखबार लिखता है कि हजारीबाग जिला चेस एसोसिएशन के तत्वाधान और सांसद मनीष जायसवाल के विशेष सहयोग से 6ठे अटल टैलेंट हट ऑल इंडिया ओपन फीडे रैपिड रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 22 और 23 अगस्त को किया जाएगा। और प्रतियोगिता होटल अरण्य विहार करगिल पेट्रोल पंप के पीछे हजारीबाग में होगी। आयोजकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर में 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल होने की संभावना है और प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर श्री राम झा के भी प्रतिभागी के रूप में शामिल होने की जानकारी दी गई है। टूर्नामेंट में कुल 2.12 लाख रूपये के नगद पुरस्कार राशि के साथ 39 ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। तो ये थी कुछ अखबार की प्रमुख खबरें और थोड़ा सा समय आज के इस प्रोग्राम में बचा हुआ है तो ये चर्चा, जैसे एक मौसम थोड़ा अभी बरसात का है तो थोड़ी साफ सफाई भी जरूरी हो जाती है तो स्वच्छता का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अभी खास करके जल

जमाव वाली स्थिति बनती है। तो इस जल जमाव की स्थिति आसपास में बिल्कुल न बढ़े। अगर पहले से कोई कचरा या कूड़ा जमा है तो उसे आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी उसकी साफ सफाई करें, घर से शुरुआत करें। स्वच्छता का पहला मंत्र यही है कि हर शुरुआत घर से हो, खुद से हो। और चलते चलते खूबसूरत संगीत हम आप सभी को सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। गुलजार साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इतिहास की बातें हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ मेघना आज विशेष दिन है और आज ही के दिन वैसे महान हस्तियों को भी हम लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ और जिन्होंने संघर्ष किया और एक नया मुकाम एक नई पहचान बनाई। तो आज ही के दिन वर्ष 1985 को गीतिका जाखड़ भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान का जन्म हुआ। इनके अलावा 1959 में निर्मला सीतारमन जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं जिनका जन्मदिन आज ही के दिन हुआ है। बी एम हेगड़े जो कि पेशेवर शिक्षक लेखक और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1938 को हुआ। 1923 में एवी तारापोरे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक का भी जन्म आज ही के दिन हुआ। इसके अलावा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान पेशवा का जन्म आज ही के दिन सन 1700 में हुआ।
1: और आज ही के दिन यानी 18 अगस्त 1934 को गुलजार का भी जन्मदिन है। तो ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार है। इसके साथ ही ये हिंदी फिल्मों में एक कवि पटकथा लेखक फिल्म निर्देशक नाटककार और प्रसिद्ध शायर भी हैं। गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही वर्ष 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित स्लम डॉग मिलेनियर को उनके द्वारा लिखे गए गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। साथ ही ये ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। तो आज के दिन हमारी ओर से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सब
1: तजुर्बे हमरा लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसके रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं।

तक इंतजार करती। कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वाले की कोई आड़ नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके हैं, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई न सरगोशी, आहट थी न जुम्बिश थी कोई। हाँ देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

तारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाती हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है कि घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

ही तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे फाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।

रंग तरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र

को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी।

0: कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा, एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशभुसली की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे के जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: है हमने।
1: फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली।

सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए हैं, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो गलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया, उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया है, जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए 7 रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमी पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि बिरहा की रात में जलना क्या होता है। देखी ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम। और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोले चांद की मिसरी, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो

बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा, कुछ श्रोताओं ने से लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिखती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता है जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता है जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता है जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहाँ पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज। गिरिडीह से मुख्य आरोपी अभय तिवारी के भाई और पत्नी हिरासत में। चतरा से बीएसओ भी गिरफ्त में। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से रांची समेत पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश। चतरा, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में भारी वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से शुरू होगी दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे भव्य उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बाद भी छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 2 आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
1: छात्र जो सो तब तक अब यहाँ जारी रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री सीबीआई जांच ना करा दे। जहाँ रद्द किए उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, प्रेस विज्ञापित निकलेगा और हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे कि आप इन तमाम एग्जाम को किस आधार पर रद्द किए हैं। बृहद पैमाने में पेपर लीक हुआ है, इन तमाम चीजों को सरकार को मानना ही पड़ेगा, तभी जा करके ये रद्द सफल होगा।
0: इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का पुरजोर समर्थन किया है।
2: छात्रों के दबाव के आगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीटीपीएल के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। सीबीआई जांच करा करके जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूँ, पूरी पार्टी खड़ी है।
0: इधर रांची सदर अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो समेत सभी इलाजरत आंदोलनकारियों को आज छुट्टी दी जा सकती है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने स्वास्थ्य समीक्षा के बाद बताया कि सभी छात्रों की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य और बेहतर है, जिसके चलते उन्हें आज डिस्चार्ज करने की तैयारी की जा रही है। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी और झारखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में पूछताछ शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। उधर चतरा पुलिस ने पत्थलगड़ा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेज नारायण पंडित को हिरासत में लिया है। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। डुमरी थाना क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष अभियान में संगठन के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हारिस बेंजामा ने बताया कि 5 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी रामदेव और एरिया कमांडर अरविंद नायक के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं।
3: जंगल में ऑपरेशन को चलाया गया, सघन छापेमारी की गई, उसमें कुछ व्यक्ति हम लोगों को जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है। 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं, 1 व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। रिकवरी जो उनके पास से होती है, AK-56 रिकवर हुआ है, 1 SLR, 1 राइफल, 1 पिस्टल और 1 कट्टा रिकवर हुआ, 146 लाइव राउंड अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं।
0: हजारीबाग के पद्मा थाना क्षेत्र के नावाडी और कुट्टी पीसी गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर 2 किराना दुकानों से 70 बोतल अवैध बियर बरामद की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से अवैध शराब बेच रहे 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए धनबाद पुलिस लाइन से आज एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय सिखाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत पर कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
4: सभी विद्यालय के माध्यम से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, उनके परिवार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धनबाद पुलिस की एक बहुत अच्छी पहल है। कॉमिक बुक भी है जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है। वो हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सेफ्टी मित्र के तौर पर काम करेंगे ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,46,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में उठे गहरे दबाव यानी डिप्रेशन के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। एक रिपोर्ट।
5: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इसका उद्घाटन करेंगे। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अनुसार प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास भी अभ्यास के लिए बोकारो पहुंच चुके हैं। दीपिका कुमारी ने युवा खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।
6: बोकारो में जो आरसी टूर्नामेंट, एक एनआईटी टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, और बोकारो में पहली बार हो रहा है, कि आगे ऐसे और टूर्नामेंट्स होते रहे बोकारो में भी, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं वो आरसी में और भी आएंगे और हमारी फैमिली को यही बोलना चाहती हूँ कि पूरे रेकमेंडेशन के साथ खेले। मेरे पास इंटरनेशनल प्लेयर है जिनको काफी एक्सपीरियंस हो गया है और वो कंटिन्यू नेशनल टीम में है। उम्मीद करती हूँ कि उनसे वो एक्सपीरियंस लेंगे।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में आगामी 29 से 31 अगस्त तक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन होने जा रहा है। हजारीबाग ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा के अनुसार इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में 7 जिलों के 1,288 खिलाड़ी 6 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज। गिरिडीह से मुख्य आरोपी अभय तिवारी के भाई और पत्नी हिरासत में। चतरा में बीएसओ भी गिरफ्त में। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से रांची समेत पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश। चतरा, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में भारी वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में कल से शुरू होगी दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे भव्य उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। छोटा

0: जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं, सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं, तो उसे नाराज नहीं दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं, क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रख दी चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ कब से, तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेले और आयते वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: क्यों कर रहे हो, कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना है, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है, अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है और हम उसे अभी यहां नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीन पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं, और वो जो गाना है वही है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए, और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम,

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था। जेते जेते पोथो होले देरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा से इनकी हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बम्बई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो होले देरी, क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने, कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला, ये भी बताइएगा। और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है? सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं। वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं की कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल। आजा आजा जिंदे शाम आने के तले, आजा जरीवाले नीले आजमाने के तले। एक श्रोता लिखती है कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की कलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता है जो कहते हैं गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा, वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि थोड़ा या थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल, सुरीला सफर।

दुदुनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए छाओ छम से नीचे कूदी क्या पंक्ति है ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है ये गाना और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना फटाफट बताना।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब। गुलजार स्पेशल, ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं, भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यो आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है

0: क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया।

0: बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणा आचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

सदाबहार नगमे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जानन जी का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी और झारखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गिरिडीह पुलिस की विशेष टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में पूछताछ शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। उधर चतरा पुलिस ने पत्थलगड्ढा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेज नारायण पंडित को हिरासत में लिया है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए धनबाद पुलिस लाइन से आज एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय सिखाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत पर कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
1: सभी विद्यालय के माध्यम से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, उनके परिवार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धनबाद पुलिस की ये बहुत अच्छी पहल है। कॉमिक बुक भी है जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है। तो हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सेफ्टी मित्र के तौर पर काम करेंगे ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो।
0: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि दरिया, बरकाखुर्द और डाडी घाघर पंचायत समेत एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन इसी सड़क से होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालौंग बगरा रोड से दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर जोगे शुभम भाऊ साहेब ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के संतारी गांव में जहरीले सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह 5 बजे दोनों बच्चे घर पर सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने दोनों बच्चों को डस लिया। एक बच्चे की मौत अस्पताल जाने के क्रम में जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठे गहरे दबाव यानी डिप्रेशन के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा।
2: जिला प्रशासन के सहयोग से ओलंपिक संघ एसोसिएशन द्वारा यह खेल का आयोजन किया जा रहा है और पूरे प्रमंडल से 1233 हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं। कुल 8.5 लाख रुपए का हम नगद पुरस्कार देने वाले हैं और खिलाड़ियों को हौसला और एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस खेल का आयोजन हो रहा है।
0: ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा ने बताया कि टूर्नामेंट में 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे।
3: 6 गेम से इस बार का शुरुआत किया गया है। इसमें फुटबॉल होगा, खो खो होगा, बैडमिंटन है, एथलीट्स है, वॉलीबॉल है और आर्चरी है, जिसमें युवा युवती दोनों को सम्मिलित किया गया है। दोनों प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में दिखाने का काम करेंगे। हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ पर सबको आगाज करके इसको एक हजारीबाग खेल महोत्सव के नाम पर हम लोग दर्जे को ले जाना चाहते हैं।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका देते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना
2: हैं। बताइए वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताए नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो वो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना
2: डर बैठ गया
1: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो

0: पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे क्या, कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है, बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरे पैदा करें।
0: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहे कि ना कहे, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के, लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो, खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
0: साइकिल ही थी हमारी तो, और हम साइकिल जो थे, हम और मेरी जो बहन थी, हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे फिर साइकिल पर बैठते थे, चलाते थे,
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
0: बिल्कुल वही हाल था, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था, तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे, उस पर चढ़ते थे,
1: क्या बात
0: फिर
1: है।
0: वापस
1: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पर बैठता था, और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पर बैठता था।
0: लेकिन कैंची, जो लड़के कैंची चलाते ना, वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया, चोट भी लगी, लेकिन
1: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था और अपने अनुभव साझा करें। क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में 3 पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
0: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
1: हाँ, तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती है, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे बाद में दिलाएंगे, या सिखाने की बात होती है, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसा आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना करने का एक फायदा भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते
1: हैं।
0: बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण कर जाते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े होने
1: रह जाता है, उनके मन पर रह जाती है बात।
0: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकते हर चीज को,
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती, वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं है, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा है। बेटियों में संस्कारों की छाव तो जरूरी है लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें यह एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए, मार्शल आर्ट और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की, जिसे वो बताने में संकोच कर रही है क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
0: सही बात है, आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं, आत्मविश्वास से निडर बनाएं। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहां से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के 4th नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
1: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन अपनी बात कह गए हैं ये
0: जी।
1: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
0: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर

0: के बारे में सही फैसले ले सके, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
1: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहे तो बेटियां दो कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल है इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
0: नहीं नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची किशोरी कुमारी ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार छम कही जाती हैं, आकाश को लांघकर चांद तक जा पहुंची आज की दुनिया में। अब रहन सहन परिधान बोली भाषा आहार विहार शिक्षा इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है, दया क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण आत्मनिर्भरता आर्थिक साक्षरता अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: है। हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूँ मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे
0: जी।
1: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी, हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले न दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरें उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें। संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने। उन्हें इतना निडर बनाएं कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा न करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
3: जी,
2: ये सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये जो फिल्म थी रश्मि रॉकेट, यहाँ इसमें भी एक ये लड़की की कहानी है जो दौड़ने में माहिर होती है।
1: बिल्कुल,
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, अब संघर्ष करती तभी वो जीतती।
0: बिल्कुल, तो संघर्ष करने से हारे नहीं पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही है। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और MBA के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था, वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: इंफीबीम की शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी, व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहां से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुंचे। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आप अपना ध्यान रखें। और हमारे साथी लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी, उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई, मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं वाहन से जुड़े हुए।
1: और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी, और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला, बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया, अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं, हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी, वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था, अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतार थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी, फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है, मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है, जैसे जैसे नई तकनीकी आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना, और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है, और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है, हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों, मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं जाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
1: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी, उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रुपए पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं, उन माता पिता से जरा पूछिए उनका दर्द क्या होता है।
1: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे, तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना?
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर पे जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है, अच्छा, तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही। तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी तक याद है वो रंग में भंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया, और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया जा रहा था और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना? तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
0: ये रंग में भंग
1: पड़ गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता है। ये एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है। इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए, फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
0: तो ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए लेते हैं। सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालोंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर गोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए छात्रों को साइबर सेफ्टी मित्र के रूप में कार्य करने की दिशा में जागरूक किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया। और सरायकेला खरसावां जिले के संतारी गांव में जहरीले सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे घर में सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने दोनों को डस लिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ऑडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधा टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
3: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
3: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
4: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
3: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
4: जी,
3: आकाशवाणी जलगांव में?
4: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
3: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
4: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाल था।
3: जी जी।
4: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
3: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
4: बिल्कुल,
3: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं।

0: हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
1: शुरू हो चुका है ये
0: जी
1: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: आप वहां भी देख सकते हैं।
0: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
2: जी मैं गलती से जब
0: गलती
2: मेरा
0: से मिली यशपाल जी से
2: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ।
0: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल फिर क्या हुआ?
2: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई चलती रही।
0: अच्छा पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
1: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो 4थी बार किया तब हुआ।
0: अच्छा,
1: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
0: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया।
1: 3 साल नहीं हुआ 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा
0: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
1: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते तो ठीक है, उसको चलने रहने देते हैं थोड़ा सा
0: जी।
1: हाँ, लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
0: जी जी जी।
1: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
0: अरे अच्छा।
1: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
0: अच्छा।
1: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया,
2: कुछ ना कुछ करवाते ही रहता
1: था। बता रहा था भाई 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त, तो बोलो 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे, वो भी अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात
0: जी। तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
1: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से नैना
0: लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
0: हाँ,
1: वहाँ
0: चल
1: इस
0: के चल के जाया
1: हॉस्टल से वहाँ तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव, दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया। मगर नहीं, तुम साथ चलो।
0: अच्छा
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, करवा लो, कल कर लेते हैं।
0: ओ
1: बोले नहीं, अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे तो
1: वो आर्य
0: यशपाल
1: समाज।
0: के

0: वहां से कोई नहीं था, तो वो हिसार के थे।
1: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम का

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे रेपेट्री
0: कौन सा काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
0: नाटकों
1: काम
0: की
1: करते थे,
0: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों के?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मा वाली थे, ये सारे नाटक वहां पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती
0: वो
1: रही।
0: दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जाना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फ़ोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे, सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था, क्रिश्चियन
0: अच्छा
2: लड़की का।
0: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5 4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
0: बिल्कुल
2: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई और रोल जब मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
0: और
2: मतलब
0: बहुत था
2: इसमें
0: जी
2: वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
0: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, नहीं ना थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
0: क्या बात है,
2: मैं
0: वाह।
2: स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन। उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, AR रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए। तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
0: जी जी
2: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़ 1,00,000 रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50,000 में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
0: क्या बात है,
2: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
0: क्या बात है,
2: अब देखो ये होता है। और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
0: जी, बिल्कुल
2: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।

0: आपने जैसा बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको
0: जी।
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
0: जी।
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो और फिर गांव में एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था और यहाँ से वो सामने गौरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम
2: विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
0: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
0: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
0: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है?
0: श्रोताओ, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी।
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी।
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
2: जी।
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
2: जी,
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
2: इसका संबंध खानपान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अशुतो, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
3: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
3: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
5: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं, विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
6: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर साहब जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना और बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे, तो मैं देख के तबले पर कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
5: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
6: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज खत्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
5: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
6: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कहीं इसमें तो बहुत सा तरथही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं।
7: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
5: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपनी शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
1: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
8: पंडित बिरजू महाराज। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
9: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
10: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
9: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
8: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
11: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
8: भगत सिंह।
12: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
13: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
12: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
14: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
15: कौन है?
16: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
15: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
16: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
15: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
16: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
15: ये इस शीशी में क्या है?
16: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
15: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
16: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
15: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
16: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
12: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
14: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
16: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
17: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
16: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
12: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
14: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
8: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
11: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।

एनसीईआरटी। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 5 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार गिर गई, इससे कई दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लावालोंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नागर गोजे शुभम भाव साहेब ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर अपना विरोध जताया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 5:02 और 18 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग।

हमारे सोने के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। शाम के 5:03 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म से, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

पत्थर के फूल इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थीं इस पर बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। डर अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और हरिहरन की।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को आपने सुना फिल्म बेताब में। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुना रहे हैं फिल्म चांदनी का ये गीत।

फिल्म चांदनी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है।

0: और तुम्हें अपनी महबूबा से मिलने खाली
1: हाथ नहीं। इवनिंग मेलोडी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जोहार संगी साथी, किसान भाई बहन और अपन सभी के स्वागत हम किसान भाई बहन के, और हम ही प्रकाश और आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में सब जन कर स्वागत हन। और वैसन में खेती बाड़ी से जुड़ल जानकारी, सरकारी योजना के लाभ और फसल के देखभाल से जुड़ल सारा जानकारी हम इनके किसान भाई बहन वास्ते लेके आए लिए। काहे कि देखा कि बरखा के जो मौसम चलित हो ओकर में ऐसे ही मौसम में धान, मकई, दलहन और सब्जी के फसल के अच्छा खासा देखभाल करे के जरूरत है। काहे कि जैसे जैसे हम इन अपन स्टूडियो में आये थलिए, ओकर में चारों तरफ से देखे थलिए, जितना भी खेत हले सब खेत में हम इनके धान के फसल लग गए हैं, जेकर में का है कि चारों दने से हरियर दिखे थे किसान भाई बहन। और तो इनके मेहनत और हम इनके भी मेहनत वहां रंग लाऊ है, कब जब वहां के अच्छा फसल हम इनके पैदा हो जाए। और वैसन में छोट छोट बात में भी हम इन ध्यान दिए तो अच्छा खासा ही हम इनके फायदा हो पा रो है। और एक बात ये भी बता दियो कि बरखा के समय चले थो ओकर में का हो कि पानी तो लबालब भरल हो खेत बारी में, कहे कि ऐसा मौसम में लगातार बारिश हुई थो तो कम से कम इतना चाहे कि ज्यादा पानी हो तो निकाल दिए, और घास फूस अगर उग गेले हो तो वहां जाकर के हम इन घास फूस के निकाय भी कर लिए। और साथे साथे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हो है उर्वरक होकर छिड़काव भी थोड़ा बहुत कर देवे के चाहिए फसल के अनुसार। और अगर कीट व्याधि अगर लग गेलो है तो कर भी पहचान कर लेवे के चाहिए। काहे कि देखा धान की फसल लगावे के बाद यह देखे पड़ो है कि कहीं धान के पतई के रंग तो चेंज ना हो गए, कहीं ई देखे पड़ो है कि कहीं बढ़वार तो कम ना है, तो कम से कम पतैया देख के हम इन समझ जाइए कि हम के धान के फसल जो है कौन तरी लगल है और कैसे हम इनके एकर से मुनाफा ले पा रही है। और वैसे बता दियो किसान भाई बहन सब की धान के हमेशा जो हमें सालों भर के खेती करोइए तो सब किसान भाई बहन सब अपन अनुभव के साझा करो थीन और अपन अनुभव से खेती बाड़ी के काम भी कर लो थीन। वैसन में किसान के लिए प्रमुख जो कहल जा सको है सरकारी योजना भी है, ऐसन ऐसन है जो किसान के बहुत ही सपोर्ट करो है और हमेशा ध्यान देते रहो है, हम सबके नाम गिना हुई है और धीरे धीरे बात भी करो है। देखा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जेकर में कहा है कि भाई कि साल में 6,000 रुपया किसान के खाता में जाए, लेकिन कहा है कि 4-4 महीना में 2,000 जाए, जेकर में 3 बजी में हम इनके खाता में पैसा हुआ है, तो काहे आओ भाई। तो सबसे पहले ये जरूरी बात है कि मान लें हमें धान के फसल लगाना हो, अब हमके पूंजी की ना हो तो शुरुआती में कम से कम 2,000 रुपया भी रहो है तो अगेना परिवार के दे करके हम इन बिचड़ा खाद ला सको ही है, अपन काम के शुरुआत भी कर सको ही है और किसान सबके बहुत ही फायदा भी हुआ है। साथे साथे देखला कि फसल तो लगा दलियो है, अब का हो कि प्रकृति के मार भी हो सको है, ओलावृष्टि भी हो सको, कुछ हो सको है, से वास्ते सरकार जो है रबी फसल और खरीफ फसल वास्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चला हुआ है। और बता दिए कि

फसल बीमा योजना में का है कि प्राकृतिक आपदा हो गलो, सूखा हो गलो, बाढ़ या ओलावृष्टि हो गलो, केकरो से नुकसान हुआ है ने तो कर भरपाई जो है सरकार जोरे बैंक के जोरे माध्यम से किसान के हो जाए, जेकर में किसान के घाटा नए हो है, तो एक जानकारी भी रखे के चाहिए। साथे साथ ही देखला कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है, एक में कहा है कि छोट किसान बड़ किसान के पेंशन ले, कहा कि पेंशन ले वास्ते पैसा भी मिलो है, लेकिन कब भाई तोर 60 साल हो जितो और अपन उम्र के हिसाब से तू बैंक में पैसा भी रखबा तो बुढ़ापा में तोरा सहारा मिलतो। तो सरकार के एक बहुत बड़ा अच्छा पहल है जेकर जानकारी भी रखे के चाहिए, और अधिक जानकारी ले तो देखा कि बैंक तोरा जा पड़तो, अपन नजदीकी जहां पर सलाह लो वहां जाके जा पड़तो, तब जाके हम इनके वो फायदा हो पारो है। चलते चलते बता दियो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कुसुम योजना ऐसा योजना बहुत चलो है, जेकर में कहा है कि पानी के किल्लत के जगह में जहां पर सिंचाई खेती बाड़ी ना हो पा रो है वहां पर ड्रीप इरीगेशन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती बाड़ी के काम हुआ है, जेकर में कहा है कि फसल बहुत ही अच्छा उगो है और बहुत ही बढ़िया हो जाए। और बता दिया कि बरखा के समय चले थे अगर में तो पानी लबालब भरल है, लेकिन जब गर्मी के समय आओ है ने तो उसमें पनिया कहां से लेते हैं, से वास्ते भी सरकार अच्छा पहल करके है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भी लाभ ले सको हैं और फायदा ले सको हैं। और बता दियो किसान भाई बहन सब तुम तो जानित हो बामीनो जानो ये भी बात के कि माटी और बीज के जो संबंध हो है ने वो सबसे बेस हुआ है, और जब बेस लगो है तो कर्म का हुआ है कि फसल के पैदावार ज्यादा हुआ है। यह वास्ते सरकार पहल करो है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाओ है, जे कृषि विभाग जोरे वहां पर माटी के नमूना ले जाथिन, वह नमूना में लेकर के वहां दियल जा है नाम पता के साथ रकबा के साथ, तो बतावल जा है कि ई माटी में कौन पोषक तत्व के कमी है और का अगर में डाले पड़ते हैं। क्या कि जान ला कि एक ही माटी में तरह तरह के फसल उगावे के हो तो माटी जांच करवे पड़तो, क्या कि एक ही फसल लगा के रहबा ना तो क्रम का हुआ है कि कोनो कोनो पोषक तत्व की कमी हो जाए, जेकर वजह से हमनी के फायदा ना हो पा रहे, तो से वास्ते माटी जांच बहुत ही जरूरी है तो छोट काम लेकिन बड़ उपज और बड़ मतलब काम वास्ते हमनी के काम करो पड़ो है। क्या कि देख ला अब तो हर घर में बंटवारा हो गलो है, अब बंटवारा हो गलो है कहेंगे मतलब हो का कि चूल्हा चौकी के साथे साथे अब जमीन के भी बंटवारा हो गलो, तो जमीन के बंटवारा होवे से का हुआ है कि जोत जे रो है जुताई भी हमके कम हो जाए, जेकर वजह से खेत में अब कोई काम करे ना चाहती। हम तो यही कहबे किसान भाई बहन से कि कम से कम खेता के बंटवारा करभा, लेकिन खेती वह में साथे मिलके करे से हमके फायदा हुआ है, जो सरकार के अच्छा खासा पहल रो है। अब देखला सीतागढ़ एक जगह हो हजारीबाग से पूरब दिशा की ओर जब हाँ, तो सीतागढ़ के अगल बगल में लगभग किसान जे हथिन अपन लीज पर खेती लेकर के एकड़ो एकड़ खेती करो थीन और खुद तो रोजगार करो थीन, साथे साथे दूसरों के रोजगार दो थीन, जेकर से दूसरों के रोजी रोटी चलो है, और वह किसान 4 महीना में 5 महीना में अच्छा खासा लाखों के आय कमाथिन और घर परिवार और किसान के एक मिसाल साबित करोथिन। तो हम तो यही कहे कि माटी के खुला ना छोड़थिन, कम से कम अपन जमीन में कुछ ना कुछ लगेते रहथिन। ऐसा ना है कि किसान सपोर्ट हमेशा करो है, लेकिन सरकार के एक और पहल है, उकर में पहल का है किसान क्रेडिट कार्ड, एक ऐसा योजना है जो किसान के आर्थिक सहायता करो है ऋण के जोरे। अगर तुहर पास एकड़ो एकड़ जमीन हो तो अपन कर्मचारी से लिखवा करके ब्लॉक में जमा कर भा, वह कागज जा है बैंक में, तो तोहर कागज के अनुसार तोहर रकबा के अनुसार बैंक के जो अधिकारी सब थीन उ तय करो थीन कि कितना ऋण दियल जा है, तो वो ऋण लेकर के अपन काम के अपन खेती बाड़ी के काम के स्टार्ट कर भा, तो तोहरा ऋण के भी जरूरत पैसा की जरूरत उसमें ना पड़तो, अपन चुका ला और कम से कम जे समय दियल जा हो उस समय में उपज करके अपन मुनाफा ले करके और सीधे अपन बैंक में जमा कर देवा, तो कर से का हो तो कि तोहर रिश्ता बैंक के रिश्ता बनल रहतो। आगे चल के कुछ बड़ काम करे पड़तो तो का कर भा, वह जाके किसान क्रेडिट कार्ड में जोरे बोले पड़तो कि भाई हम इतना इतना चुके लिए है, तो हमें के आगू भी हमें के काम करे के चाहिए। तो सरकार जो है हमेशा पहल करते रहो है ताकि किसान के चेहरा में खुशहाली आवे। और ये भी बता दिए कि
ऐसा ना है कि किसान भाई बहन सब कुछ ना करो थे, सब कुछ करो थे, लेकिन जानकारी बहुत ही जरूरी है। अब वह जानकारी ना रहे के वजह से किसान जो है पीछे रह जाए।

तो हम तो यही कहो किसान भाई बहन सब कि आज के समय में जहाँ मोबाइल हाथ में हो, जानकारी तो हर हाथ में हो, तो जरूर पहल करती, क्योंकि हमेशा राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमेशा पहल करते रहो। और सबसे खुशखबरी ई बात रहो है ने कि हर जिला में पशुपालन से, कृषि से जुड़ल हर तरह के विभाग बनल है, जेकर में कहा है कि किसान थोड़ एक गोड़ अगर आगे करतीन तो एक गोड़ सरकार भी आगू करो है, बताओ है कि भाई हमके कैसन खेती करे के चाहिए। अब देखला कि हमने के हजारीबाग के बात करवा तो बगले में देखा कृषि विभाग हो, वहां पर माटी जांच भी हो है, विशेषज्ञ भी बैठो थीं, अब बतो थीं कि भाई कि कौन तरी खेती करे के चाहिए। पशुपालन विभाग देखा झील के पास हो, वहां जाके तू अपन अनुभव ले सको है कि कैसन पशु के पालिए ताकि दुधारू नस्ल के गाय हमी के मिल जते, एक रोजगार बनते, इस तरह से हर तरह से हो। वह देखला के कुछ दूर आगे जब हाँ तो मछली पालन विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, वहां जाकर के मछली पाले के तरीका, जाल भी निशुल्क मिलो है, वहां के एक स्कीम भी चलो है जे मछुआरा सबके जाली हो लो, चाहे देखा कि उकर में मछली पालन करे वास्ते जितना सुविधा हो है, सब सुविधा जो है सरकार जोरे फ्री में मिलो है, लेकिन तोहरा पहल करे पड़तो, अपन जानकारी के इच्छा के जागृत करे पड़तो। दुनिया बहुत बड़ा है और दुनिया में बहुत बड़ा है तो का है कि भाई सब कुछ समान, लेकिन खाएबा तो अनाजे ने, तू अनाज के बनाए वास्ते और खाना के करे वास्ते और जैसन जनसंख्या बढ़ित हो ओकर वास्ते हर जमीन में देखा खेती करना जरूरी हो और अपन अपन जितना रोजी रोजगार करना जरूरी हो, जेकर से विकास के डोर जो है आगे बढ़ सको है और किसान के चेहरा में खुशहाली आ सको है। तो भाई ये तो रहले बातचीत सरकार के बेहतरीन योजना के बारे में। अब हम इन जानकारी साथे साथे एक लोकगीत सुनोइए, लोकगीत के बाद हम बतेबो भाई कि एक महिला किसान हथिन अम्बाडी के, हजारीबाग के रहे वाला हथिन, वो अपन अनुभव के साझा करथिन कि महिला किसान जो है कौन तरी खेती कर सको है और कैसे पुरुष किसान के कंधा मिला करके वो आगे बढ़ सको है। तो ये जानकारी सुनने से पहले एक सुनोइए लोकगीत।

हाँ तो किसान भाई बहन सब इ लोकगीत से सुनेस के बद तोहरा बहुत ही आनंद आयल हो तो क्या देखा कि गगरी कब भरो है जब बरखा के पानी बहुत तेज हो जाए। अब ऐसे भी हर घर में कहीं न कहीं पानी के स्रोत रहो है, अब पानी के मजा ही कुछ अलग रहो है। तो भाई जानकारी से पहले जो बात करे थे लिए कि एक महिला किसान जो अपने अनुभव के साझा करती जो अम्बाडी कहती, लेकिन उकर से पहले कुछ बात करो ये कि आज के बाजार भाव के बारे में और तापमान के बारे में। कहे कि देखला बाजार भाव काहे बात करो ये कि समय समय पर किसान जो हथिन अपन काफी मेहनत और लगन से खेती बाड़ी के काम करो थी, और वैसे में क्या हुआ है कि अगर अगर उनका पता रहते कि भाई अपन जे फसल के दाम कितना लगे थे, का है बेचे में है, कैसे पैकेजिंग करना, कैसे पहुंचाना है, तो उनका बहुत ही आराम हुआ है। तो जानो ये आज के बाजार भाव। तो सबसे पहले लाल आलू जो है 20 से 25 रुपये प्रति किलो, सफेद आलू 18 से 20 रुपये प्रति किलो, प्याज 40 से 45 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 40 से 45 रुपये प्रति किलो, पत्ते गोभी 30 से 35 रुपये प्रति किलो, पटल 30 से 35 रुपये प्रति किलो और भिंडी भी 30 से 35 रुपये प्रति किलो। नेनुआ के बात कहला तो नेनुआ 25 से 30 रुपये प्रति किलो, कद्दू 20 से 25 रुपये प्रति किलो, और हरियर मिर्च के बात कहला तो हरियर मिर्च जे रहलो 110 रुपया से 120 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्चाई 100 से 110 रुपये प्रति किलो, गाजर 20 से 25 रुपये प्रति किलो, बीट 40 से 45 रुपये प्रति किलो और सीम 30 से 35 रुपये प्रति किलो, बीन 40 से 45 रुपये प्रति किलो। वैसे ही देख ला कि खीरा का बात कहला तो खीरा 20 से 25 रुपये प्रति किलो, और टमाटर यानी बिलोती हमिन के जे हसालो भर जे चर्चा में रहो है वो रहले।

0: है आज के 40 से 45 रुपये प्रति किलो और लाल साग और पालक साग 20 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो। तो इस हिसाब से बाजार भाव रहो है जगह जानकारी किसान भाई बहन के रखे के चाहिए और हमीनों के जानकारी रहो है तो भाई खरीद कर बिक्री करे में बहुत ही फायदा हुआ है। और देखा कि मौसम जो बरखा के मौसम होकर में कहा है कि बारिश बहुत तेजी से है वैसन में खेत में पानी लबालब भरल है और में कहा है कि माटी में भी नमी है और तापमान में भी काफी गिरावट है लेकिन कम से कम बता दिए कि आज के तापमान ज्यादा से ज्यादा हलै 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम आज के तापमान हलै 24 डिग्री सेल्सियस। अगर नमी के बात कहला तो नमी रहलै 95%। कहे जाब मात हो कि अभी जो है खेती बाड़ी में खेत में पानी पूरा भरल है जेकर से उनका हमेशा ध्यान देवे पड़ते कि पानी कहाँ रखना है कहाँ से निकालना है। भाई अब जे बात करे थलिए मौसमी खेती के बारे में कि बरसात में कौन तरी खेती करो थीन अब बरसात के बाद जब उनका पास औरों को सम और खेती बाड़ी करे करो है तो का उपाय लगाओ थीन वो भी अपन अनुभव के साझा करल थीन। तो सीधे चलो ये हमीन उर्मिला देवी के पास जे सफल किसान हथिन अम्बाडी हजारीबाग के तो सुने ही जानकारी के।
1: श्रोताओं आज हम आए हुए गांव अम्बाडी में और आज हमारे साथ हैं एक सफल महिला किसान उर्मिला देवी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी का काम करते हैं और कैसे खेती बाड़ी से जुड़कर लाभ लेते हैं अपने घर परिवार को चलाते हैं। तो उर्मिला देवी जी आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में।
2: जोहार।
1: इस वक्त कौन कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं आप?
2: लगाए हैं कद्दू, आलू लगाए हैं, मरचा लगाए हैं, ओल लगाए हैं, मकई लगाए हैं, बीन लगाए हैं, मरचा लगाए हैं, इतना खेती कर रहे हैं अभी कर रहे हैं।
1: अच्छा, इतने सारे फसलों की खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं ना, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले जब बीज लगाने का समय आता है तो खेत बाड़ी का जो है मिट्टी का जुताई कैसे करते हैं?
2: हर डांगर से करते हैं।
1: हर बैल से आप खेती बाड़ी में जुताई का काम कर लेते हैं ना? हाँ। बीज कहाँ से लाते हैं?
2: मिलाते हैं बीज भंडार से।
1: बीज भंडार से आप बीज लाते हैं? क्या? हाँ। बोल के लाते हैं आप?
2: हाइब्रिड बीज दीजिए।
1: लाने के बाद क्या करते हैं?
2: उसमें गोबर पाटते हैं, गोबर मिलाते हैं, डीएपी मिलाते, तोड़ते हैं, उसको चालते हैं, आदमी जन लगा के तब दाना बैठाते हैं, उसमें पानी देते हैं, कोड़ाई करते हैं।
1: अच्छा ये बताइए तो हम अगर बात करते हैं कि अभी आप कद्दू की खेती किए हैं ना?
2: हाँ।
1: तो कद्दू को तोड़ाई कर लिए क्या? हम तो देख रहे हैं कि बांस से खड़ा भी किए हैं।
2: हाँ, बांस घोरान देते हैं।
1: कितना कद्दू निकल चुका अभी?
2: अभी 2-4 बाजार निकले हैं।
1: तो ये लतेदार जो सब्जी लगाए हैं कद्दू कोहड़ा, तो क्या इसके लिए क्या करते हैं आप? बीजा को कैसे कैसे लगाते हैं आप?
2: कैसे कैसे लगाते हैं? इसमें हार जोत के उसमें खाद गाढ़ा कोड़ते हैं।
1: अच्छा।
2: गाढ़ा कोड़ उसको गोबर खाद डालते हैं, डीएपी डालते हैं।
1: अच्छा।
2: तब दाना डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जान माता इतना तो होता है, कोड़ाई करते हैं 2-3 बाजी।
1: अच्छा।
2: कोड़ के उसमें पास देते हैं, तब घोरान मड़वासन खड़ा करते हैं।
1: कितने दिन में उसका पैदावार बढ़ जाता है?
2: 10-12 दिन में।
1: 10-12 दिन में 20 से पौधा बन जाता है।
2: हाँ, पौधा बन जाता।
1: तो उसको आप लगा देते हैं?
2: हाँ, लगा देते।
1: तो क्या देखभाल करते हैं? देखिए अभी का समय जो है
2: इसमें देखभाल है, मेहनत पूरा है इसमें। हाँ। दवा पानी देखभाल,
1: दवा पानी सब देते रहते हैं ना?
2: देते।
1: ये देख रहे हैं कि बरसात के समय में खास कर देखिए कि घास हो गया या बहुत निकल जाता है, क्या करते हैं?
2: सब सब कवार देते हैं, आदमी जन लगा को अपना कवारते हैं।
1: अच्छा अच्छा। तो देखते होंगे कि कोई बड़ी बीमारी भी आता है क्या?
2: बड़ बीमारी आता है, दवाई लेन के डालते हैं।
1: आपकी जो फसल लग रही है कद्दू देख रहे हैं लगा हुआ है, उधर टोटी भी लगा हुआ है और इधर आपका मकई का खेती हो रहा है, तो इतने सारे फसल को एक बार कैसे देखते हैं?
2: एक बार नहीं देखते, आगे पीछे लगाते हैं।
1: आगे पीछे लगाते हैं।
2: हाँ, आगे पीछे,
1: ताकि उसका बढ़वार जो है आगे पीछे होगा। हाँ, तो देखे में
2: तैयार होता था, लोग लगाएंगे।
1: अच्छा अच्छा। फायदा होता है इससे?
2: फायदा एक बेजी नहीं पड़ेगा, ढीला जाएगा ना।
1: हाँ हाँ, ढीला।
2: जब योग तैयार करते हैं तब फिर योग लगाते हैं, वो तैयार हो जाएगा फिर लगाएंगे।
1: अच्छा अच्छा।
2: आगे पीछे करके लगाते हैं,
1: देखने में बहुत आपको सीधा होता है कि जैसे मतलब मकई का अगर बढ़वार हो गया।
2: हाँ।
1: तब तक आप बीज लगा दिए, आप कद्दू का, कद्दू भी बढ़ रहा है, उसे बेचने में भी सुविधा होता।
2: हाँ।
1: है बेचने समय क्या करते हैं? जैसे कि आपको मकई तैयार हो चुका है, कद्दू देख रहे हैं कुछ बहुत सारा लटका हुआ है।
2: हाँ।
1: तो कितना बार कद्दू बेच चुके हैं?
2: बेचे कद्दू बेचे।
1: अच्छा। बाजार में जब ले जाते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, कैसे यहाँ तोड़ाई करते हैं, बाजार तक कैसे पहुँचाते हैं?
2: से देखिए काटते हैं।
1: अच्छा।
2: टोकरी मेहनत करके लेते हैं, जगह लेके बैठते हैं, भाई लोग खाता है, ले ले
1: ग्राहक लोग ले लेते हैं ना।
2: ले
1: अच्छा
2: लेते हैं।
1: क्या देख के ग्राहक जो है ले लेते हैं आपका फसल को, क्या देखते हैं वो लोग? क्या
2: देखिए उसको देखता है, ताजा माल, बढ़िया सूरत वाला सब्जी वो सब किनता है, नरम का कोई पूछ भी नहीं करता।
1: तो कितना पैसा लग जाता हो अगर हम बात करें तो?
2: पैसा तो लग जाता है शुरुआत में कम से कम 2000, जैसे हम सामान लीजिएगा 1000, 5000, कोई भी खेती करेंगे 5000 रूपए लग रहा है बीजा खरीदे में।
1: अच्छा, जब बीजा खरीद लेते हैं तो फायदा की बात करते हैं?
2: उसी से सब बाल बच्चा पढ़ाते लिखाते खाते खाते पीते, दो चार रुपया देते फीस को।

0: पी कलम है सब लेता है ने।
1: अच्छा।
0: कैसे करेंगे यही सब डालते हैं इधर से।
1: मतलब घर में जितने भी बाल बच्चे हैं
0: सब को डालते हैं,
1: सबको आप खेती बाड़ी से जो पैसा आता है उसी से घर भी चलाते हैं। मालिक क्या करते हैं?
0: हर भर जो तो कहा करता था,
1: किसान है, ये भी अपने खेती बाड़ी से ही जुड़े रहते हैं। घर में आपके पास देख रहे हैं पशु बकरियां भी हैं, कितने रखे हैं आप?
0: बकरी है 4-5-6
1: छह बकरी हैं। और आपके पास कितने बैल या गाय हैं?
0: हाँ, ये 2 लेरुगा है और 2 बैल, 4
1: 2 बैल रखे हैं। ताकि खेत का जुताई आसानी से हो जाए, है ना। इससे भी फायदा होता है, गोबर जो होता है गोबर से
0: उसमें डालते हैं,
1: उसी में मिट्टी में आप डाल देते हैं तो आसानी से काम चल जाता है। कुछ पैसा आपके हाथ में आता है बेचने के बाद, तो उस पैसे का क्या करते हैं आप?
0: देखिए 10 गुना आती है, महीना फीस लगता है, ट्यूशन फीस लगता है, देखिए खर्चा खेवे पीवे उसको कितना खर्चा, कलम कॉपी कितना खर्चा, सब खर्चा हो जाता है, पैसा रहले रहता है।
1: पैसा जो है एक तरह से कुछ कमाते हैं तो लोग देखभाल भी कर देते हैं। जैसे कि देखिए अभी आज के समय में आपके गाँव अम्बाडी आए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी पुरुष लोग होते हैं खेती बाड़ी लगा देते हैं, लेकिन उसका देखभाल करना उसको संभालना सब एक महिला किसान पर रहता है। तो आप बहुत मेहनत से खेती
0: खाना बनाएंगे खाएंगे उसी में लगल रहता है,
1: अपने खेतों पे ही पूरा ध्यान देते हैं,
0: वही सांझी भी घर ढुकेंगे बाबू। बहुत मेहनत है खेती में,
1: तो मेहनत होता ही है, और उससे जब खेती बाड़ी का काम करता है आदमी तो उससे लाभ भी होता है। तो कैसे जानते हैं कि किस मौसम में क्या क्या फसल लगाना चाहिए?
0: जैसे कि देखिए अब आड़ू के सीजन हो गए, बासिन पर है ना, आड़ू के सीजन हो गया, मरचा के सीजन हो गया, गोभी के सीजन हो गया,
1: अच्छा अच्छा
0: खीरा हो गया, कद्दू फिर लगेगा, लगते रहता है के।
1: तो इसके बाद जो अब जो तो चलिए कुछ कुछ खेती बाड़ी में प्रबंधन की जरूरत पड़ता है, जैसे कि सिंचाई पटवन का काम, पटवन के लिए क्या क्या सुविधा है आपके पास उर्मिला जी?
0: पटवन सक्शन मशीन,
1: मतलब कुआं है आपके पास?
0: हाँ मशीन है, नदी है, कुआं है, सारे है।
1: इस बगल में आपके नदी भी गुजरा है, अम्बाडी के गाँव के बगल से नदी भी गुजरा है,
0: नदी गुजरा,
1: उस नदी से भी आप पटवन का काम कर लेते हैं। नहीं तो आपके पास कुआं है, मशीन लगा हुआ है, तो मशीन से भी पटवन का काम आसानी से हो जाता है,
0: हो जाता
1: ताकि कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अच्छी बात है। तो उर्मिला जी हमारे कार्यक्रम में आए, अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो किसान भाई बहन सब अब धर जो जानकारी सुनलिए वो हल जानकारी हले भाई उर्मिला देवी के अनुभव हलथिन, जे महिला किसान हलथिन, जे अपन बात बतेलथिन कि बरसात के समय में कौन तरी खेती बाड़ी के काम करो थीन, है ना। और चलते चलते बता दिए कि हमने के खेती बाड़ी के कार्यक्रम रोजाना चलू है ना, इतवार के छोड़ करके सोमवार से शनिवार तक ठीक 5:30 शाम के बेरा में हो है, और किसान अपन अनुभव के साझा करो थीन, और इ ना साथे साथे जान ला कि कृषि विशेषज्ञ भी आवो थीन, अपन बात के बतावो थीन कि किसान के कौन तरी खेती करे के चाहिए। वैसे भी जान ला किसान भाई बहन सब कि हर समय कोनो काम रहे अगर जानकारी रख के कोई काम करे से ने हर काम बेस हुआ है, जानकारी ना रहे की वजह से ही समय के बर्बादी हो जाए और साथे साथे का है कि परेशानी भी साथे साथे आ जाए। तो हम तो यही कहे कि जितना चादर उतने पैर फैलावे हिसाब तो पहले बहुत कहावत सुन लिए है, लेकिन अब यही है कि कम से कम जहां तक आंख जाए वहां दूर दूर तक अपन सपना के पूरा करे वास्ते पहल जरूर करे के चाहिए, क्या कि पहल से ही किसान आगे बढ़ सको है। क्या कि देख ला कि एक एक किसान एक एक गांव में कोई किसान बहुत तरक्की कर जाए और कोई किसान देखते रह जाए, तो बस एक ही चीज के अंतर पड़ जाए। अंतर कहाँ पड़ो है? जानकारी ना रहे के वजह से। जानला कि अगर एक डेग तू अगर घर से निकालो है और कृषि विभाग के जोरे, पशुपालन जोरे, मत्स्य विभाग के जोरे अगर जाके मेल मिलाप कर ले तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जितो। क्या कि सरकार हमेशा पहल करो है कि हमेशा किसान आगे बढ़े और उन्नत करे। तो हमारा उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी सब तुहिन के बहुत पसंद आये हो, तो ऐसे ही नवा नवा जानकारी के साथ आगे भी बनल रहे, लेकिन अब धर जाके बेरा हो गए है। तो एक साथ ही अपन दोस्त प्रकाश के दथिन अनुमति जोहार।

खेती बारी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद छात्र आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दो आंदोलनकारी अब भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग जिला ओलंपिक संघ की ओर से हजारीबाग में 3 दिवसीय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 6 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। धनबाद में हो रही लगातार बारिश के कारण जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार गिर गई, इससे कई दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने लालोंग बगरा रोड से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान में अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। छात्रों को साइबर सेफ्टी मित्र के रूप में कार्य करने की दिशा में जागरूक किया जा रहा है। और हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से मनाई चौक तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 6:02:40 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम यू वाणी सुन रहे तमाम श्रोताओं एवं युवा दोस्तों का स्वागत है आप ही के इस कार्यक्रम में। आधे घंटे के इस दिलचस्प जानकारियों और संगीतमय कार्यक्रम यू वाणी में आज आपके साथ में अली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों आइए आज हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं इंसानी जिंदगी यानी मानव जीवन और उसके स्वास्थ्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। दोस्तों किसी शायर ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताहत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जी हाँ दोस्तों, मानव जीवन का पहला सार यही है कि हम एक दूसरे के काम आए, और ये भी एक बड़ी इबादत है, बड़ी पूजा और आराधना है, और इसी एतबार से हम अपनी हैसियत के अनुसार जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं जरूरतों और उन्हीं दान में गाहे बगाहे एक बड़े दान की जरूरत पेश आती है और वो है रक्तदान। यूं तो मनुष्यों को कभी कभार जिस्म के दूसरे अंगों की भी बतौर दान जरूरत पड़ती है, लेकिन

0: इंसानी जिस्म यानी मानव शरीर से ही मिल सकता है। दोस्तों, जीवन रक्षक के तौर पर रक्तदान बहुत बड़ा दान है। एक यूनिट खून से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। सच तो यह है कि ये थैलेसेमिया और दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ये जीवन रेखा साबित होता है। दोस्तों, रक्तदान से पहले इन बातों को जहन में रखना जरूरी होता है कि रक्तदाता की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो और उसके शरीर का वजन कम से कम 50 किलोग्राम हो। रक्तदाता पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसे कभी कोई गंभीर बीमारी न हुई हो। और हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने और महिला हर 4 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। दोस्तों, रक्तदान से रक्तदाता को भी बहुत से फायदे होते हैं। मसलन, रक्तदाता के शरीर में नया रक्त बनता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, इससे आत्मसंतोष और समाज सेवा की भावना बढ़ती है। दोस्तों, आमजनों में खासकर जानकारी के अभाव में रक्तदान से संबंधित कुछ भ्रांतियां भी हैं जो दुरुस्त नहीं है। सच तो ये है कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। स्वस्थ वयस्क साल में 3 से 4 बार आसानी से रक्तदान कर सकता है। दोस्तों, लोगों में भ्रम और गलतफहमी है कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है, जबकि शरीर 24 घंटे में तरल पदार्थ की पूर्ति कर लेता है और कुछ ही हफ्तों में नई रक्त कोशिकाएं बन जाती हैं। एक भ्रम यह भी है कि सुई या सिरिंज से संक्रमण का खतरा होता है, लेकिन हर बार पूरी तरह नई स्टरलाइज्ड और डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भ्रम है कि बुजुर्गों या कम उम्र के लोग रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 से 65 वर्ष आयु का स्वस्थ व्यक्ति भी जिसका वजन 50 किलोग्राम हो रक्तदान कर सकता है। दोस्तों, इस तरह रक्त की कमी की वजह से होने वाली समस्याओं को रक्तदान जैसी सेवा कर उन समस्याओं को बआसानी दूर किया जा सकता है और ज़रूरतमंदों को नई जिंदगी बख्शी जा सकती है। दोस्तों, अब थोड़ा रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन गीत से पहले ये जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आपने गीत सुना, आइए अब आप सुनवाते हैं एक वार्ता। औरतों में कोई सामान नहीं। वार्ताकार हैं साक्षी मिश्रा।
2: मैं साक्षी मिश्रा आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक वार्ता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय है औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। लड़की हो तुम लिहाज करो, लोग क्या सोचेंगे, आंसू पोछो थोड़ा तो लिहाज करो, दूसरे घर जाना है तुम्हें थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों, थोड़ा तुम भी तो लिहाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी जो कभी पांडवों में बांट दी गई और कौरवों के पास जुए में हार दी गई? या रामायण में माँ सीता ने अपने पूरे निष्ठा से पत्नी धर्म निभाया, भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताया, फिर भी सीता हरण के बाद अपने पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग कर दी गई? क्या यह जायज था? क्यों एक लड़की को ही हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है? आज भी कुछ घरों में लड़की को बाहर पढ़ने या नौकरी करने क्यों नहीं भेजा जाता? आखिर बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्यों समाज की सोच लड़की पर आकर रुक जाती है? कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। जब तक बेटियां अपने माँ बाप के घर होती है, तब तक उसे ये समझाया जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसे ससुराल में ये समझाया जाता है ये तो पराए घर से आई है। क्या बेटियों का कोई घर नहीं? क्या पहचान है बेटी की? हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, फिर वही कुछ घरों में उसी लक्ष्मी को दहेज प्रथा में जलाकर मार दिया जाता है। ये बर्ताव बेटी के साथ ही क्यों? आज भी कुछ ऐसे घर हैं जहां लड़की को शिक्षा देना पाप माना जाता है, लेकिन माँ सरस्वती भी नारी है जो ज्ञान की देवी है। फिर लड़की को शिक्षा देना पाप कैसे हुआ? शिक्षा पे पहला अधिकार तो नारी का ही हुआ। लड़की की शादी के लिए पहले लड़की का चरित्र देखा जाता है, लड़की कैसी है, कहीं उसमें कोई दाग तो नहीं। लेकिन लड़कों को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों उनके चरित्र को परखा नहीं जाता? आखिर इतना भेदभाव क्यों? मानती हूँ अब हमारा समाज अधिकांश ये मानता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये फर्क तो आ ही जाता है। शादी से पहले बेटी को ये समझाया जाता है कि वर्तमान में तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे माता पिता हैं, और शादी के बाद तुम्हारे उस घर के माता पिता। क्या बेटियों की कोई इच्छा नहीं या कोई खुद की जिंदगी नहीं? आखिर औरत हूँ कोई सामान नहीं। जन्म लेते ही माँ अपनी बेटी के लिए शादी के गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत है ये समझाने लगती है। लड़की हो अपना खास ख्याल रखना, और कुछ भी हो तो मुझे पहले आकर बताना। आखिर क्यों हर बात पर हम लड़कियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि लड़की हो तो तुम कमजोर हो? क्या लड़कियां खुद की रक्षा नहीं कर सकती? मानती हूँ हमारे माता पिता हमारी चिंता करते हैं, लेकिन यही बात लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों लड़कियों को कमजोर समझा जाता है? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तब उस माँ से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। फिर ये बर्ताव औरत के साथ ही क्यों? बचपन से ही तभी रूप तभी तो तभी व्यवहार के लिए टोटी जाती है। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही इनके ऊपर रिश्तों का भार डालकर पीछे कर दिया जाता है। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं, ये सिर्फ शब्दों में ही रह जाते हैं। अभी के युग में ही कुछ घरों में लड़की होना पाप माना जाता है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि बेटे तो भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिस घर में औरत अपने घर के लिए अपनी जिंदगी बदल लेती हैं, फिर भी उनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती, आज भी कई ऐसी औरतें हैं जिन्हें

0: दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा लिखा है कि एक औरत को उसकी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं? कुछ घरों में आज भी नारी का कोई सम्मान नहीं। शायद यही कारण है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने तो काफी सारे नियम कानून बनाए हैं और काफी सारे समानताओं के अधिकार दिए हैं, लेकिन जब तक मानसिक तौर पर वो सम्मान और अहमियत नहीं देंगे, तब तक हमारे देश का विकास कैसे संभव होगा? आखिर औरत इतना मजबूर क्यों है? खुद सारे दुनिया की जननी होकर वह अपने पहचान से दूर क्यों है? यूँ तो नारी पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वाकई में नारी को वो सम्मान दिया है? शादी के पहले तो लड़की को बहुत प्यार सम्मान मिलता है और उसके माता पिता बहुत धूमधाम से उन्हें विदा करते हैं, लेकिन क्या शादी के बाद भी वह लड़की उतनी ही खुश रहती है? क्या उन्हें उतनी ही आजादी मिल पाती है? क्यों सारे कर्तव्य लड़की को ही समझाए जाते हैं? आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। क्यों सारे नियम स्त्री के लिए ही बनाए जाते हैं? क्यों औरत की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती? क्या पुरुषों का फर्ज सिर्फ पैसे कमाना है? अगर देखा जाए तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। स्त्री ही स्त्री को सारे नियम मानने को बाध्य करती है। ऐसे हमारा देश पुरुष प्रधान हो रही जब महिलाएं खुद स्वीकार कर लेंगी यही जिंदगी है, सदियों से चला आ रहा है। पुरुष सब कुछ है और स्त्री कुछ भी नहीं। आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। अंत में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक छोटी सी कविता, जिसका शीर्षक है औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सबके साथ खड़ी होती हूँ मैं, खुद अकेली रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। सरस्वती का भी रूप मानी जाती हूँ, फिर भी शिक्षा से दूर कर दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। महाभारत से रामायण में मैं अबला बन रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। मैं वो भिक्षा हूँ पांच पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांच पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इन दुनिया में, फिर जुए में हार दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन चुरा ले जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन चुरा ले जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं हूँ जो माटी में समा दी जाती हूँ और आने वाले युगों में इतिहास बना दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। हर घर घर में पूजी जाती हूँ मैं। हर घर घर में पूजी जाती हूँ मैं। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ही प्रश्न करना चाहती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। धन्यवाद
1: दोस्तों। वार्ता आपने सुना, औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। वार्ताकार थी साक्षी मिश्रा। अब थोड़ी चर्चा सड़क सुरक्षा के ताल्लुक से। तो दोस्तों, सड़क सुरक्षा और सावधानी ही जीवन की सुरक्षा है। दोस्तों, सड़क पर सावधानी ही जीवन की वास्तविक सुरक्षा है। यातायात के नियमों का पालन करना किसी कागजी बाध्यता से ज्यादा खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का संकल्प है। तेज रफ्तार और लापरवाही न केवल आपका जीवन खतरे में डालती है, बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित होती है। दोस्तों, इस तरह दुर्घटनाओं से बचने और खुद को सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम यातायात के नियमों का सख्ती से और पाबंदी से पालन करें। मसलन, हमेशा निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहने। कार या अन्य चार पहिया वाहन में हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बिल्कुल प्रयोग न करें। और हाँ, ये तो इंतहाई जरूरी है कि कभी भी नशे की हालत में वाहन न चलाएं। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पूरी ईमानदारी से पालन की जाए।

दोस्तों और प्यारे श्रोताओं, सड़क सुरक्षा और सावधानी व जीवन की सुरक्षा से जुड़ी एक और अहम बात यह है कि वाहन मोड़ते या लेन बदलते समय हमेशा इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करें। आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। जगह मिलने पर ही मुमकिन हो तो ऐसा करें, वरना कतई नहीं। और आखिर में पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने चालकों का हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, ये और इस तरह की और भी जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आज अब बस यहीं तक। आप उठाइए इस नगमे का लुत्फ और दीजिए कार्यक्रम युवानी से हमें इजाजत। नमस्कार।

युवानी अभी आप सुन रहे थे हमारे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में समय शाम के 6:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 और 38 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का लीजिए पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं दूसरा आदमी फिल्म का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म शक्ति में। प्रोग्राम के बाकी गीत हम आपको सुनाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत FM हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फूल और कांटे फिल्म का। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारे ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:55 होने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना

0: तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य ने की मुलाकात, परीक्षा रद्द करने का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा पर कहा, सीबीआई जांच कराए।

0: सरकार, वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बयान पर किया पलटवार, कहा बाबूलाल अपना बयान वापस लें। गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सहित 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियों का पानी उफान पर। और शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का 22 और 23 अगस्त को रांची में आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस के मंत्रीगण और विधायक गणों ने मुलाकात की। उन्होंने कल हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में छात्रों के हित में टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि इससे अभ्यर्थियों की अनिश्चितता दूर होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, साथ ही विकासात्मक योजनाओं और जनहित के विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार की जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा को योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करार दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि छात्र हित में सरकार सीबीआई जांच की घोषणा करे ताकि नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
1: और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है, तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। इस जॉब के लेन देन में खरीद बिक्री जो हुआ है, उन भ्रष्ट अफसरों को बचाना चाहते हैं और बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह। इसीलिए सीबीआई से ही जांच हो, तभी मामला पकड़ में आएगी और जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़ में आएंगे।
0: जेपीएससी जेएसएससी विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से सीबीआई जांच संबंधी दिए गए बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बाबूलाल को हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए। मंत्री ने बाबूलाल को अपना बयान वापस लेने का सुझाव भी दिया।
2: और आज जब हमारी सरकार इतना बड़ा फैसला लिए तो ये बाबूलाल मरांडी जी को, हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं फिर से मैं कहूंगा, आपने जो बयान दिया है आप वापस इनको। हेमंत सोरेन जी झारखंड की शान है, राहुल गांधी जी देश की शान है।
0: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार की घोषणा के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को विराम दिया है, लेकिन छात्र हित में उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रद्द होना और जांच होना स्थायी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ये गारंटी दे कि आने वाली भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और पेपर लीक न हो।
3: जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगो जुग तक पेपर लीक ना हो, पैरवी ना हो और धांधली न चले।
0: गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार रामदेव लोहरा अपने दस्ते के साथ अकासी और जयरागी गांव के आसपास घूम रहा था, जहां उसे एरिया कमांडर अरविंद नायक और 2 अन्य सदस्यों के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल सहित कारतूस और नक्सली पर्चे बरामद किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: से किसी प्रकार की कोई रोवर कोई कोताही हम लोग नहीं करने वाले हैं।
1: प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से ली जाने वाली नेट सहित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि परीक्षाओं का संचालन केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ विभाग या एजेंसियों के माध्यम से कराए। पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट डॉ. राजीव नारायण प्रसाद ने कहा कि एनटीए संस्था पूरी तरह से अयोग्य और असक्षम हो गई है। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा की ओर से रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के प्रावधानों और व्यावहारिक पहलुओं पर एक दिवसीय सेमिनार 23 अगस्त को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सेमिनार में बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर, होम बायर्स, बैंक और वित्तीय संस्थान, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर और विविध विशेषज्ञ समेत रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े हितधारक शामिल होंगे। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले, कुएं और तालाबों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रांची जिले में स्थित कांके, धुरवा और गेतलसूद डैमों के अलावा रामगढ़ जिले का पतरातू डैम भी पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। उधर लगातार बारिश से दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा और कांची नदियां भी उफान पर हैं। खतरों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को नदी और जलाशयों में नहीं जाने की अपील की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य में हो रही लगातार बारिश से किसानों को चिंता सताने लगी है। धान और सब्जी के खेतों में पानी भर जाने से फसल नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं सब्जी की खेती नष्ट होने से बाजार में इसकी आवक पर असर पड़ सकता है। शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत एसकेएफआई झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 22 और 23 अगस्त को रांची में किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में झारखंड के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी काता और कुमेते में भाग लेंगे, जिसमें 22 अगस्त को 12 वर्ष से ऊपर और 23 अगस्त को 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य ने की मुलाकात। परीक्षा रद्द करने का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी घोषणा पर कहा, सीबीआई जांच कराए सरकार। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने बयान पर किया पलटवार, कहा बाबूलाल अपना बयान वापस लें। गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सहित 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियों का पानी उफान पर। और शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 का 22 और 23 अगस्त को रांची में आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जामताड़ा स्टेडियम परिसर में संपन्न हुआ, जहां सूबे के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

0: नागरिकों को उनके घर में रहने किलोमीटर की और जरूरत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, सरकारी अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है तथा भारतीय शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण विशुद्ध दवा उपचार जैसी सेवा को और भी प्रभावी बनाया जा रहा है।
1: जामताड़ा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 8 एवं 9 अगस्त को शिविर लगाकर मतदाताओं से दावा आपत्ति एवं अर्हता पूरी करने वाले युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। मतदान केंद्रों का निरीक्षण के क्रम में सुपरवाइजर पार्थ कुमार मंडल ने बताया कि
2: 8 और 9 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित की गई है। इसमें अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उनके लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है, किन्हीं को सुधार करना है तो उनके लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है। यानी कमीशन का जो निर्देश है कि योग्य व्यक्ति छूटे नहीं और अयोग्य व्यक्ति जुटे नहीं, उन्हीं का काम आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण करने की अपील का जामताड़ा जिले के किसानों के बीच व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले के किसान पर्याप्त बारिश नहीं होने के बावजूद बेहतर ढंग से कृषि कार्य कर रहे हैं। आत्मा जामताड़ा के परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि
3: जामताड़ा जिले में इस साल कृषि में जून माह में 226 मिलीमीटर की जगह 138 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इसके बावजूद इस साल में रोपा अभी तक 63% के आसपास धान का रोपा हो चुका है। किसान जो है अपने तालाब नदी का भी सहारा लिए हुए हैं और अभी वर्तमान में जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। साथ ही साथ मेरा मक्का 75% के आसपास रोपा हो चुका है। दलहन पर भी और तिलहन में मूंगफली पर भी अच्छा रोपा परसेंटेज हिसाब होने की संभावना है। इसलिए हम लोग समय समय पर किसान को टिप्स भी दे रहे हैं, इससे संबंधित सभी जागरूकता कार्य भी कर रहे हैं।
1: वन विभाग की पहल पर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती मिर्गा गांव में वन महोत्सव मनाया गया। वन महोत्सव के दौरान किसानों को पर्यावरण संतुलन में वृक्षों के महत्व की जानकारी देकर पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि
4: हजारों की संख्या में लोग आए और प्रत्येक घरों में हम लोगों ने कहा कि 5-5 पेड़ आप लोग लगाइए। जामताड़ा में पहली बार 10 लाख पेड़ जिला में हम लोग लगाने का संकल्प लिया है और उसी के तहत आज जहाँ पे हमने वन महोत्सव बनाया है वहाँ लगभग 8,000 पेड़ लगा रहे हैं। जिस प्रकार जो पॉल्यूशन हो रहा है, आज जिस तरह से वातावरण में छेड़छाड़ हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है लगाना और इसलिए हम उसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे।
1: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को नगर भवन दूलाडी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचीन आदिवासी संस्कृति जल जंगल जमीन की रक्षा करने की अपील की गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
5: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 7:15 और 33 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झनकार। झनकार कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, हम आपको सुना रहे हैं अरमान फिल्म से, आवाजें हैं उषा उत्थुप और साथियों की।

बप्पी लहरी उषाउत्सव और साथियों का आपने सुना फिल्म डिस्को डांसर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म लूट मार का ये गीत।

झिनकार, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: ई कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और बताओ कृष्ण जीवन भाई, रावरकर हाल समाचार कैसन है?
7: हाल समाचार तो बढ़िया है, अपन बताओ।
6: मोर हाल समाचार हूँ नगदे नगद है, और उम्मीद करीला की सुनवाइया भाई बहन मन कर हूँ हाल समाचार नगदे नगद।
7: और देखो एखन तो खेती बाड़ी बड़ा जोर शोर से चले लाई है ने?
6: हाँ हाँ।
7: और हमरे कर किसान भाई बहन मने जाने देखो तने एकदम घर छोड़ के सब जो है खेते में दिसबे है ने?
6: एकदम।
7: और बहुत बढ़िया एखन काम चल रहा, मौसम भी बहुत बढ़िया कर दिलक।
6: हाँ हाँ। और देखा थे कि रोपा डोभा कर काम हूँ लगभग अंतिम अंतिम रूप बटे है।
7: हाँ हाँ। और देखो मौसम कभी धूप करत है कभी बारिश हुआ थे, खेती कर जो है बहुत बढ़िया ये मौसम है।
6: एकदम नगद कहली। और देखो भाई बहन मन, मौसम जो है वो कखनो कोनो हो सकेला, कखनो ढेर बगरा बारिश हो सकेला, ई मन से हमरे मन के जो है फसल हूँ नुकसान हो सकेला,
7: माने मौसम का कभी धोखा दे सके, कभी बाढ़ भी आ सकेला, कभी
6: हाँ हाँ
7: आई तो बरसात हो गेलक,
6: तो कखनो ढेर बगरा रौद हो गेलक,
7: कभी सूखा हो गेलक।
6: तो इकर ले हमरे मन के देखो कृष्णजीवन भाई, फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उके हमरे मन के करवाई के रखे चाहिए अपन फसल कर बीमा।
7: फसल कर बीमा जैसे हमरे आप शरीर कर बीमा करी
6: से तरी हमरे मन के फसल बीमा योजना हूँ करवाई के रखे चाहिए। देखो फसल बीमा योजना करवाले हमरे मन कर जे नुकसान है जे फसल कर उकर क्षतिपूर्ति सरकार बट से भेटायला।
7: और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान मन ले चला ले सरकारी योजना है, बीमा करवाले प्राकृतिक आपदा जैसे कीट और रोग जैसे हमने बता ली मन से फसल कर नुकसान होवे से उकर भरपाई होवे।
6: एकदम रावरे नगद कहली।
7: और देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर और जो है 2016 में हो रहे
6: एकदम।
7: और ये फसल बीमा योजना किसान मन ले वरदान है, तो किसान भाई बहन मने हमरे मन के फसल बीमा करे के चाहिए और इकर लाभ उठाए। अब हमरे कार्यक्रम के भी आगे बढ़ा थे।
6: हाँ।
7: और इस कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करब से के बताए दो थे। सबसे पहले हमरे जानकारी करब कि दुधारू पशु में होए वाला बीमारी मन का है और उ बीमारी मन से कर बचाव कैसे करे चाहिए से के बतावे डॉक्टर नंदिनी कुमारी। कृषि विकास गीत सुनब केतकी देवी और संगी मन कर गावल। और नई उम्र की नई फसल में एगो गाय और बकरी पालक किसान कमला उराव से रावण के भेंट भी करवाओ।
6: तो चलो दुधारू पशु में का बीमारी होयला उकर से हमरे का तरी बच सकीला, पशु के बचाई सकीला, एकर बारे में जानकारी करीला बतात हैं डॉक्टर नंदिनी कुमारी और इनकर से रावरे गोठियाई ही।
7: किसान साथियों नमस्कार। दुधारू पशु हमारे ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। पशु स्वस्थ रहेंगे तो दूध उत्पादन अच्छा रहेगा, प्रजनन क्षमता बेहतर होगी और पशुपालक की आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन किसान साथियों वर्ष भर बदलते मौसम, तापमान, नमी, खान पान, स्वच्छता की कमी, परजीवी संक्रमण रोग तथा पशुशाला की उचित देखभाल न होने के कारण पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी कुमारी, विभागाध्यक्ष पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। नंदिनी जी आपका नमस्कार है, हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
8: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
7: नंदिनी जी आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि दुधारू पशुओं को वर्ष भर स्वस्थ रखना क्यों आवश्यक है?
8: जी, दुधारू पशुओं को स्वास्थ्य सीधे उनके दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता और पशुपालक की आय से जुड़ा होता है। यदि पशु बार बार बीमार पड़ता है तो उसका दूध उत्पादन कम हो सकता है, प्रजनन में समस्या आ सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है और उपचार पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। इसीलिए केवल बीमारी होने के बाद उपचार करने के बजाय पूरे वर्ष रोगों की रोकथाम पर ध्यान देना अधिक लाभकारी होता है। वर्ष भर पशुपालकों नागरिकों को मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि समय पर टीकाकरण, नियमित कृमिनाशक, स्वच्छ एवं सुखी पशुशाला, स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार एवं पर्याप्त खनिज, नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण, परजीवियों का नियंत्रण, बीमार पशु को अलग रखना, आवश्यकता पड़ने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना।
7: जी, तो दुधारू पशुओं में वर्ष भर होने वाले प्रमुख संक्रमण रोग कौन कौन से हैं?
8: जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए यह बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। दुधारू पशुओं में कई संक्रामक रोग हो सकते हैं। इनमें क्षेत्र और पशु की स्थिति के अनुसार रोगों का खतरा अलग अलग हो सकता है। प्रमुख रोगों में गलघोंटू, जिसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या HS कहते हैं, लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर, जिसको ब्लैक क्वार्टर यानी BQ भी कहते हैं, खुरहा मुंहपका, जिसको फूट एंड माउथ डिजीज यानी FMD कहते हैं, थनेला या मैस्टाइटिस, ब्रूसेलोसिस और उसके अलावे जीवाणु और अन्य बहुत सारे विषाणु जनित रोग इसमें शामिल हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हमें निश्चित ही जो जरूरी है सावधानी बरतनी चाहिए।
7: जी, तो गलघोंटू बीमारी क्या है और इससे हमारे पशुओं को कैसे बचाया जा सकता
8: है? गलघोंटू, जिसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है, एक गंभीर जीवाणु जनित रोग है। यह विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम, तनाव और कुछ परिस्थितियों में तेजी से फैलता है। प्रमुख लक्षण होते हैं इसमें तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, गले एवं गर्दन के आसपास सूजन, मुंह से लार आना, खाना पीना कम या बंद करना, अत्यधिक कमजोरी होना, गंभीर स्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर टीकाकरण करें। पाश्चुरेला मल्टोसिटा नाम के बैक्टीरिया से यह होता है। जैसा हम जानते हैं, ईया और एल्ला, जो हम लोग बच्चों को भी बताते हैं, यह ग्राम नेगेटिव है। बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, पशुशाला में स्वच्छता बनाए रखें, बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें तथा बिना सलाह के दवा या एंटीबायोटिक न दें।
7: जी, तो लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर क्या है?
8: यह BQ भी कहा जाता है शॉर्ट में, क्लॉस्ट्रिडियम चौवियाई से होने वाली यह बीमारी मुख्य रूप से युवा गाय एवं भैंसों को गंभीर रूप से होता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मांसपेशियां अफेक्टेड होती है, यानी मसल्स अफेक्टेड होते हैं, और इसमें खुरखुर की आवाज आती है अगर आप इसको टच करेंगे तो, क्रेपिटेटिंग साउंड। तो इसमें प्रमुख लक्षण होते हैं तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सूजन, पैर या शरीर के किसी हिस्से में सूजन, चलने में कठिनाई, प्रभावित स्थान पर गैस बनने के कारण, जैसा मैंने कहा भी, चरचराहट या कुड़कुड़ाहट जैसी अनुभूति, गंभीर मामलों में अचानक मृत्यु। और इसके लिए बेस्ट बचाव है कि जो एनुअल टीकाकरण है, वार्षिक, जो कि मॉनसून के जस्ट पहले होना चाहिए सारे टीकाकरण इम्पोर्टेंट, जैसे FMD हो गया, BQ हो गया, HS हो गया, तो इसका भी टीकाकरण समय से आप वार्षिक करवाइए, जो बहुत जरूरी है।
7: जी, आपने बताया था खुरपका मुंहपका रोग।
8: जी,
7: तो खुरपका और मुंहपका रोग से हमारे पशुओं को कैसे बचाएं?
8: खुरपका मुंहपका यानी खुरहा चपका भी कहते हैं, अर्थात फूट एंड माउथ डिजीज यानी FMD, ये वायरल डिजीज है। अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग होने के कारण इसमें गाय, भैंस तथा अन्य खुर वाले पशुओं में ये हमें सावधानी खास बरतनी चाहिए और यह बहुत प्रतिकूलता से प्रभावित करता है। जहां तक प्रमुख लक्षण की बात करें तो जैसा कि नाम है खुरहा चपका, मैंने खुरपका मुंहपका, मतलब खुर में घाव हो जाएगा और मुंह में घाव हो जाएगा, अफेक्टेड होते हैं। उसके अलावे तेज बुखार, जैसा मैंने कहा, मुंह में छाले या घाव, जीभ एवं मसूड़ों में घाव, खुरों के बीच घाव, लंगड़ापन, अत्यधिक लार आना, दूध उत्पादन में तेजी से घटना, और अगर इलाज नहीं होगा तो चूंकि वह न खा पा रहा है न चल पा रहा है तो मृत्यु भी हो सकती है। और इसके होने के बाद जो होता है, बहुत सारे इसके बाद भी दुष्परिणाम होते हैं, इसीलिए बेहतर है कि सालाना जो टीकाकरण होता है वो जरूर कराएं। नए जानवर को झुंड में लाने के पहले कुछ दिन क्वारंटीन यानी इसको अलग करके जरूर देख लें, बीमार पशु को अलग रखें और पशुशाला और उपकरणों की नियमित सफाई करें। हो जाने के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी लक्षण अनुसार उसका इलाज करें। जैसे मान लीजिए कि आप उसके जो खुर में, मुंह में, उसको कुछ ऐसा टॉपिकल ऑइंटमेंट दें जिससे कि उसको रिलीफ मिले, और उसके अलावे उसको अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको साथ में जैसी भी जरूरत है लक्षण अनुसार उसको ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है।
7: जी, दुधारू पशुओं में अक्सर थनेला की बीमारी हो जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि थनैला बीमारी क्या है और इसे दूध उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
8: जी, जैसा कि नाम है थनैला यानी मैस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड यानी थन का सूजन, लाल होना, यह दुधारू पशुओं में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि अगर किसी दुधारू पशु के दूध उत्पादन ज्यादा है तो उसमें थनैला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम साफ सफाई से दूध नहीं दूहते हैं यानी कि मिल्किंग नहीं करते हैं या गलत मेथड से मिल्किंग करते हैं या इंजरी है हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं या साफ बर्तन सही से नहीं कर रहे हैं, इन सभी कारणों से इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हो सकता है पहला। दूसरा, अगर इसकी इलाज में थोड़ी सी भी कौतूहल बरती गई या देरी हुई तो वो जो उसका बाट है, थन है, पूरा बर्बाद हो जाता है और क्वार्टर्स बर्बाद होते हैं, धीरे धीरे करके सारे क्वार्टर्स में इन्फेक्शन फैलेगा और वो जानवर जो है अच्छा खासा दूध देने वाला जानवर भी पूरी तरह से उसके दूध देने की क्षमता खत्म हो सकती है। लक्षण की बात करें तो थन गर्म और सूजा हुआ, थन में दर्द, दूध में थक्किया या असामान्य परिवर्तन, दूध की मात्रा कम होना, गंभीर स्थिति में पशु को बुखार और कमजोरी होना है। अब बचाव की बात करें, जैसा मैंने कहा दूधों को पहले और बाद में थनों की स्वच्छता करें, साफ हाथों से दुहाई करें, दुहने के बाद साफ एवं स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करें, पशु को गीली गंदी जगह पर ना रखें। अगर आप देख रहे हैं कुछ भी लक्षण है मैस्टाइटिस के, आप तुरंत उसका टेस्ट, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें।
7: जी, अक्सर पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं।
8: जी,
7: तो पेट के कीड़ों और अन्य आंतरिक परजीवियों से पशुओं को कैसे बचाएं?
8: ये छोटी सी लगने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और आपको, क्योंकि ये लोग चरते हैं कृष्णा जी, ग्रेजिंग करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, और हम उनसे उनका ग्रेजिंग जो होता है बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है मेजॉरिटी केसेस में।
7: जी।
8: और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इस चीज के ससेप्टेबल होते हैं, मतलब परजीवी जैसे कि आंतरिक परजीवियों के, ठीक है, जिसको हम लोग एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो अगर हम सही से उसका सही से नहीं देख रहे हैं तो एंथेलमिंटिक्स से भी हमें उन्हें बचाना है, हेलमेंट से भी बचाना है, तो इन सभी कारणों से हमें देखना बहुत जरूरी होता है। जहां तक परजीवियों की बात करें तो उसके प्रमुख लक्षण होते हैं वजन कम होना, शरीर कमजोर होना, दस्त या पाचन संबंधी समस्या होना, दूध उत्पादन में कमी होना, बालों की चमक कम होना, कुछ परजीवी संक्रमणों में जबड़े के नीचे सूजन जिसे बॉटल जॉ कहा जाता है, ये भी हो सकता है। और जहां तक हम बचाव की बात करें तो पशु चिकित्सक की सलाह से उचित समय पर हमें कृमिनाशक दवा देना चाहिए और साथ ही हमें रेगुलर डीवॉर्मिंग करना चाहिए। इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि गोबर का अगर हो सके तो उचित जांच भी कराएं, साफ पानी उपलब्ध कराएं और हां, जो बहुत जरूरी है, दूषित चारागाहों से उन्हें बचाना चाहिए।
7: ये तो आपने बता दिया आंतरिक परजीवी के बारे में।
8: जी,
7: अब बाहरी परजीवी जैसे टीक, जू और मक्खियों से पशुओं को क्या नुकसान होती है?
8: जी, ऐसा लगता है ना सोचकर कि ये बहुत ही छोटी सी चीज है, समस्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि ये जो बाह्य परजीवी होते हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट बीमारियों के वेक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उसे कैरी करते हैं, वाहक होते हैं। उसके अलावे अगर यह बाह्य परजीवी जैसे अठैल, चमुक्कंड, जू, ये अगर बहुत ज्यादा रहेंगे ना तो उससे खून की कमी होगी, त्वचा में खुजली, घाव होता, आप देखिएगा कि चकते जैसे स्केली लीजन्स होते हैं कई बार, मतलब उसमें ये स्किन होता है वो हटा हुआ होता है, छिलकुइया की तरह निकला हुआ होता है, उसके ऊपर से डर्मेटाइटिस देखिएगा आप, देखिएगा वो दिन भर जानवर खुजली कर रहा है, बेचैनी होगी, बाल झड़ते हुए होंगे, बुखार या अन्य संक्रमण हो सकता है, या जैसा मैंने बोला बहुत सारे बीमारियों का भी वो वाहक होता है। पशुओं के, इसके लिए पशुओं के शरीर की नियमित जांच करिए, उसको डिपिंग जो होता है एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए डिपिंग, जिसको हम लोग जहर स्नान के नाम से गांव में जानते हैं, ग्रामीण इलाके में फिर बहुत काम करता है, जिसमें से बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं जैसे परमेथ्रिन, आप उसमें उसको गर्दन तक उसको बॉडी को डुबा करके उसका, उससे क्या होता है बाह्य परजीवी बहुत हद तक हटते हैं। उसके अलावे जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जैसे आइवरमेक्टिन से भी इंडो और एक्टो दोनों पैरासाइट भी कई बहुत हद तक समस्या का निदान होता है।
7: जी, तो पशुओं में दस्त की समस्या क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
8: जी, दस्त की समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जिसको इग्नोर करते हैं, अगर वो ज्यादा हो और अगर उसका सही से इलाज ना हो तो वो उसमें मृत्यु भी हो सकती है, और दस्त बहुत सारे अन्य बीमारियों के लक्षण को भी पता करने में आपको मदद करता है। प्रमुख लक्षण बार बार पतला गोबर, कमजोरी, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी, भूख कम होना और दूध उत्पादन में कमी। और जहां तक बचाव की बात करें कृष्णा जी, हमेशा स्वच्छ और पर्याप्त पानी दें, सड़ा बासी फफूंदी लगा चारा ना खिलाएं, क्योंकि ये दस्त एक ऐसा चीज कोई वो बीमारी नहीं है, वो बहुत सारे बीमारी में मैनिफेस्ट हो सकता है कृष्णा जी, चाहे वो डाइजेशन इनडाइजेशन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बल्कि पैरासिटिक लोड ज्यादा है, तो हमें ये रूल आउट करना है कि वो क्यों हो रहा है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये इस तरह की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं दस्त है, तो दस्त जो है वो ऐसी समस्या नहीं कह सकते हैं, वो बहुत सारे समस्याओं का प्रतिबिंब भी हो सकता है।
7: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को दुधारू पशुओं में होने वाले प्रमुख बीमारियों और इसके निदान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
8: जी धन्यवाद।
6: तो भाई बहन मन, एखन हमरे दुधारू पशु मन में का बीमारी होएला और उकर से हमरे मन पशु मन के कातरी बचाई सकीला, इकर बारे में जानकारी कर ली बतात रहे डॉक्टर नंदिनी कुमारी और इनकर से कृष्ण जीवन भाई गोठियाई रहे। तो कृष्ण जीवन भाई आगे बताओ का जुगाड़ है, गीत गोविंद होए के चाहिए।
7: आओ एगो नागपुरी में गीत सुना थी, केतकी देवी और संगीमन कर गावल।
6: चलो तब सुन ले वीला।

0: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मन नागपुरी में गीत सुनली केतकी देवी और संगी मन कर गावल।
1: तो अब आगे आओ किसान से राउर के भेंट करवा थे।
0: चलो तभी किसान से राउर कर करल गोइठ के सुन ले विला।
1: हाँ आओ सुन थे। किसान भाई बहन मन, आज हमर स्टूडियो में एगो महिला किसान है, कमला उरांव। ये गाय पालन भी करें ना, बकरी पालन भी करें ना। तो आओ आज इनकर से जानकारी कर थी कि ये कैसे कैसे गाय और बकरी के पालन करे ना, सेकर बारे में। तो कमला बहन रौर के जोहार कर थी।
2: जोहार।
1: कि रौर रहक वाला कहाँ कर हकी?
2: हम है कि चितरकोटा बड़का टोली के रहकी।
1: तो कमला बहन रौर का करी ले?
2: हम गाय बकरी यह सब के पाली ला और हमारे छुआ पुता कर जीविका चलाई ला।
1: अच्छा अच्छा। तो रौरे गाय पोसा थी, बकरी पोसा थी, तो रौर के ई सब काम करे कर प्रेरणा कहाँ से मिले?
2: हम तो ऐसे भी रही, लेकिन अब आदमी कर देखा ही सिंगाने, हम देखा थी कि सब देखा थी कि अब खेती बाड़ी में भी करी लो तो भी अकेला ने परेशान हो गया। बकरी पाल थी तो बकरी ने भी हमके बुझा थे कि चल भाई खेत बाड़ी में भी करब और बकरी में भी करब। तो खेत बाड़ी तो नहीं होगी तो बकरी के काटो के बेच ली तो छुआ पुता फीस फास देवेल हो जाये। कोई के हम बकरियों रख ली और अब उसने छुआ पुता के पढ़ा ली लिखा ली।
1: तो रौरे एखन पढ़ल लिखल कतना है?
2: बगरा तो नहीं पढ़ी, आठे क्लास पढ़ी।
1: तो एखन रौठना कतना गाय है?
2: गाय तो हमारे जगन एखन 13 गो है।
1: 13 गो है। और छगरी मने?
2: छगरी भी एखन हमारे जगन 25 गो है।
1: अच्छा। तो सबसे पहले बताओ कि रौरे गाय जब पोसी कैसे कैसे उकर रख रखाव करत है?
2: हम गाय के तो रखती अब एखन जैसे उकर शेड बना ली, शेड बनाए के उकर शेड में हम बढ़िया सुके पलस्तर जो कर ढलवा दिली है और उकर में अब बढ़िया से रखा थी। और एखन आधा दुधारू है, आधा गभीन है, तो जैसे है वैसने वैसन रखी लगर बाद दुधारू के अलग रखी ला और गभीन के अलग रखी ला और बछरा बछरू के भी उके अलग रखी ला। सब को अलग अलग रख के फिर हम दूध मने दूही ला, तब फिर गुहार से निकला के धूप दाने तनिक उकर ले रखे बनाए ही वह जगन रखी ला।
1: गाय के रौरे शुरू शुरू पोसली तो शुरू में रौरे कै गो गाय के रखली?
2: राखे तो कमे राख रही पहले, जब हमके ऊपर से लाभ हुए लागलक तब हम कहली कि अब इकरे हमारे है नौकरी हके, अब हम इकहे बढ़ाब और इकरे से हमारे जीविका के चलाब, कह के हम ऊपर ने लाइक गेली।
1: अच्छा, दूध बढ़ावे खातिर रौरे का करे ला गाय का?
2: कैल्शियम खियाई ला, दर्रा देवी ला, चोकर देवी ला और जो है घास देवी ला, कुट्टी देवी ला।
1: तो ये सब कर व्यवस्था कहाँ से हो?
2: कुटी तो अपन घरे न हो और ये सब कैल्शियम मन के मन के तो किन ही ला, किन एक चीज के तो किन ले ला, दर्रा चोकर मने पोरा पतुर तो हमारे जगह है पोरा मने से के कुटी काट के दे देवी ला, कटवाई ला मशीन से उकर खाए के ले सब करे ले उकर ले डाड़का जैसन बनाल गेले है, वही डाड़का ने बोथ देवी ला पानी मशीन से पानी के ले गई और साइन देवी ला उकरे में सब चीज के चोकर भेलक दर्रा भेलक ये सब के।
1: और कौन कौन सा बीमारी होवे गाय में?
2: बहुत बीमारी होवे लोकर में, खुरहा होवेला, फोड़ा फुंसी भी होवेला, कभी चपका भी हो जाएला।
1: रौरे ये सब कर उपचार का तरी करी ला?
2: अब हमीन तो देखी ला आँख में, तब कैसे अभी ऐसा होला कह के हमीन अनुभव लगाए ला और हमीन डॉक्टर के बुला ले।
1: डॉक्टर के कहाँ से बुलावी ला?
2: आवा ना डॉक्टर मन फोन नंबर दे रखा है ना।
1: ब्लॉक बटे से कोई सुविधा है कि नहीं?
2: ब्लॉक बटे से भी आवा ना।
1: ये सब जब बीमारी हो ला तो रौरे जैसे बता ले खुरहा हो ला, चपका हो ला और हम सुन है कि थाने में दूध फाट जाए ला,
2: थनाइल हो जाए ला,
1: थनाइल उखे कहे ना नहीं?
2: हाँ, थनाइल।
1: तो उकर रौरे उपचार कैसे करे ले? और मान लो कि जैसे डॉक्टर मन अगर नहीं आल तो घरेलू उपचार जैसे देहाती उपचार भी कुछ कुछ हो ला, तो उकर उपचार कैसे कर सके किसान भाई बहन मन के बताए?
2: थनाइल होल कर बाद ने हुआ हमके पता चल जाल दूही ला तो थोड़े हल्का खून में आवेला। अच्छा, थनाइल अच्छा। होवल में खून आवेल तब कहब कि हम अरे ये तो थनाइल हो गेला, कह के फिर हम हुआ सोडा देवी ला और जवाइन इके डबकाई ला और हरदी इतना चीज के डबकाए के देवी ला, 3 सांस तक देली तो साफ हो जाएला।
1: अच्छा अच्छा। बिना डॉक्टरे करी घरेलू दवाई से?
2: हाँ, घरेलू दवाई है।
1: और कितना दिन पियावे खोए लोग?
2: 3 दिन।
1: 3 दिन में?
2: हाँ।
1: 3 दिन में खत्म?
2: 3 दिन में खत्म नहीं होलक, 4 दिन 5 दिन पिया दे कोई दिक्कत न खे।
1: और जैसे खुरहा चपका जो हो उपचार करी?
2: खुरहा चपका कर तो अब उके तो कादो में लगा लो ठीक नहीं हो भी होले का करब उ धीरे धीरे अपने भी ठीक हो गए कादो मन में लगाई ला खुरा हो गए होले
1: तो देहाती दवाई हो गए
2: हाँ देहाती दवाई हके
1: और छगरी एखन ठीक कै गो है
2: 25 गो है
1: 25 गो तो 25 गो छगरी के राखे कर का व्यवस्था कर
2: उकर घर बनाए दे ही एक ठो
1: का तेरी घर बनाए
2: घर ऐसने रहक लखे घर बनाए ही कर में और चाइरो कोना माने की पटरा बनाए दे पटरा में बैठेला
1: अच्छा पटरा में बैठेला
2: हाँ बांस का ठठरा पटरा बनाए दे ही तो उकरे ने जा जाए के बैठे ना और नीचे रहल से मन के सबके बढ़ेर सोढ़ेर के गोबर के बिहान के निकला ले विला
1: अच्छा बकरी कर जैसे बैठे कुठे कर व्यवस्था रहे ला बकरी मने जैसे पेशाब कर दल पैखाना कर दल
2: वो तो नीचे गिर जाए
1: वो नीचे गिर जाए तो सह खातिर अरे जाली जैसन उके बांस कर पटरा बनाए है ना तो चलो अरे गाय भी पोसली है छगरी भी पोसली है तो इस सब में रोर के आमदनी कितना हो जाए
2: इकर में तो आमदनी हमके तब लाभ में अलग से हम नहीं छोड़ा थी अब एक ठो गाय अखन देवी 6 किलो शाम के देवी 5 किलो तो अब एखन उकर में तो हमके जतई भी पैसा हमके एखन आधा के डेयरी में देवा थी सेंटर बटे तो एखन महीना ना आवे ला हमके तो एगो गाय में 7,000
1: महीना
2: हाँ
1: अच्छा तो बहुत बढ़िया है कमला बहन रवरे हमार स्टूडियो में आली और बहुत बढ़िया गाय पोसे कर बारे में और बकरी पालन कर बारे में बकरी पोसे कर बारे में रवरे बहुत बढ़िया जानकारी दिली रवर के बहुत बहुत धन्यवाद है जोहार
2: धन्यवाद जोहार
0: तो भाई बहन मन एखन हमरे मन गाय और बकरी पालक किसान कमला उराव से कृष्ण जीवन भाई कर करल गोइठ के सुन ली
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: उतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहाँ
4: पर हम तो सभी डाले हैं
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
4: सच है
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
4: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
1: और इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक ई कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची सुनोया भाई बहन मने आवरावरण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: मनीष भाई के देव विदा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर रात के 8 बज चुके हैं। पेश खिदमत है आप ही के खतों पर अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी चाहत प्रोग्राम सुनने वालों को अली शब्बीर का नमस्कार। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं के इस गीत से, जिसमें अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है करबला चौक रामगढ़ से शमी महमद, अजमेरी खातून एहसान अहमद, आरजू परवीन, शहजादा सलीम, निगार सुल्ताना और शबाना परवीन ने। और आप हैं हजारीबाग पत्रातों से बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन और समस्त परिवार। आप हैं जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्कीस फातमा, कनीज फातमा, यास्मीन फातमा और शहनाज फातमा। और इसी गीत के लिए खत आया है मेहर नगर उमरखेर महाराष्ट्र से। आप हैं अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर। बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गवहानकर, सुमित गवहानकर और धवनी गवहानकर। आप सबने मोहम्मद रफ़ी को फिल्म हम किसी से कम नहीं में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये नक्शा।

दुश्मन। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पचबंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, नीलूफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू, शमा परवीन आरजू और कमाल अहमद आरजू। अब हैं स्टेशन रोड झुमरी तलैया से विजय शर्मा, मनोज मगधिया, अंशु मगधिया और हरजीत सिंह। यह खत है बनासों से, आप हैं शमीम अहमद, शगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद। आप सबने दुश्मन फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है, लीजिए सुनिए आप सब अपनी पसंद का ये गीत।

Ah! अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से लिया गया, आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकीज़ा बेगम, महफूज आलम, शहनाज नूरी और शमशाद बेगम ने। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और टीडी मल्होत्रा। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, करनाल से हैं जग्गी दुआ और ये खता है मालीटोला खीरगांव से आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, जितेंद्र भगत, ऋषि और राहुल। आप सबने एक दूसरे के लिए फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है, लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

आपकी चाहती है कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम हजारीबाग से हरी शब्बीर के साथ। अगला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैनी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और विनय निवान शर्मा। गोलपार रामगढ़ से आप हैं शाहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अशरफ हुसैन, अनवर हुसैन, तलत यासमीन, रिफत यासमीन, फरहत यासमीन और बिस्मिल्ला खान। आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एस आर कांगड़ा। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गाइड में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

रब ने बना दी जोड़ी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से, आवाज है रूप कुमार राठौर की, और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजाल मलिक ने। और इसी गीत के लिए खत आया है पिलावल हजारीबाग से, आप हैं शौकत, मुकब्बिर, मजहर, हैदर, अनवर और शमीम। रोमी हजारीबाग से आप हैं रेशमा, शुक्रुल्ला, नजराना, शुक्राना और महापारा। आप सबने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब उठाइए अपनी पसंद की इस नगमे का।

ये अगला खत हमने लिया है गांधी जो आया है गांधी चौक रोपड़ से। आप हैं हरदेव उमिका बलविंदर बिस्क जतेक बिक्स और उमिका बिस्क। आप हैं अहमदाबाद से जतीन मेहता भालचंद्र मेहता फुलवा मेहता विकास बड़के और नीलेश बड़के। अनारबाग बनारस से आप हैं गुड़िया सुलेमान जी शाहिदा रजनीश रजीना जरीना और आयशा। और पतली गली वाराणसी से आप हैं इरफान हैदर अनवर और नासिर साथ में हैं जावेद मुश्ताक। आप सबने सिलसिला फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म मशाल से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भंडार सिवनी कुंडा गांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान अनुष्का चक्रधारी, सालार पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा मेहरुद्दीन कैसरदीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार, प्रमिला और ज्योति श्याम कुमार, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और पुरीना वर्मा, अमरपुर पोंडरा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। आप सबने मशाल फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है, लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी चाहत एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पिघलता आसमान फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है जीटी रोड बरही से। आप हैं सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन। आप हैं मेन रोड बड़का गांव से नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू भोला और उनके मम्मी पापा। मैसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन, इशरत अकरम, अरहान, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, शाजिया, नाजिया, नूरीनाज, बच्चू शेख और चीना शेख। आप सब ने पिघलता आसमान फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये नगमा और दीजिए हमें प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।

आपकी चाहत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 होने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक, और रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ 8। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है, और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने

0: कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
2: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला

0: सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अमस्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अमस्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4, host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges, while advancing sustainable development.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में 16 अगस्त सन 1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नज़र गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौलाकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़

दिल्ली में अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चले जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।

मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहबारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।

इसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें

1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

इस फिल्म में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया। उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणिरत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी, उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। यहां दिल लेने देने की अदा भी कातिल है, यहां के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
0: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई, जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव। साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया। फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल के निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश। इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा। सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्म आई। सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न। इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू। संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादा।

दिसंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।

सन 2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:37 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 10:01 हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम रजनीगंधा। प्रोग्राम सुनने वालों को अली शब्बीर का आदाब। आइए आगाज करते हैं फिल्म हीर रांझा के इस गीत से, जिसमें अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में।

टूटे हुए सितार के सब तार कस गए, टूटे हुए सितार के सब तार कस गए, बारिश हुई के दर्द के नगमे बरस गए।

बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर रात के 10:30 और 26 सेकंड हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज के फनकार। आज के फनकार प्रोग्राम में आज हमने इंतखाब किया है पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को। आइए सुनते हैं उसके गाए कुछ चुनिंदा नख्मे। प्रोग्राम के आगाज कर रहे हैं फिल्म हमराज के इस गीत से, जिसकी आवाज है महेंद्र कपूर की।

उपकार फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर को कार्यक्रम आज के फनकार में, और यह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आप उठाइए इस नगमे का लुत्फ और दीजिए प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।

आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 11 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के

0: experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. In the BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand have advanced to the pre-quarterfinals in Delhi. The Indian duos outshined United States' Lauren Lam and Alison Lee in straight games 21-15, 21-12. A shuttlers Lakshya Sen and Unnati Huda have sailed into the second round of their respective singles events. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 11:10 हो रहे हैं। यही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपने बुधवार के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।